ईमान ले आया कि जी मैं तो मानता हूं एक पानी का गोता लगा, लेकिन अबू जहल इतना इतना शदीद है, इतना जालिम है कि गर्दन कटी हुई है, आखिरी रगे हैं, फिर भी कुफर से बाज नहीं आया और इस्लाम के मुखालफत करने से बाज नहीं आया। अब देखें कि उसने जुल्म और सितम की जो तरीका ईजाद किया है, आज पूरी तारीख आप उठा के देख लें, आज की तारीख में आप भी समझ नहीं सकेंगे कि अबी जहल से पहले भी किसी जालिम ने ऐसे सोचा होगा। बाद में तो लोगों ने बहुत सोचा, क्या कुछ नहीं हुआ कश्मीर में, क्या कुछ नहीं हुआ कोसुफू में, क्या कुछ नहीं हुआ सर्बिया में, क्या कुछ नहीं हुआ शीशान में मुसलमान बेटियों के साथ, खवातीन के साथ। अबू जहल ने दो ऊंट मंगवाए और ऊंटों को रस्से बांधे गए और रस्से बीबी सुमैया के पांव में बांधे गए, एक इस पांव में रस्सा बांधा गया, एक इस पांव में रस्सा। ये कभी आपका अकल सोच सकता है तहजीब का ये तरीका? और मुखालिफ सिमत में ऊंटों को खड़ा किया गया और उस जालिम ने कहा कि जब मैं हुक्म दूं तो दोनों ऊंटों को भगा दिया जाए, तो एक ऊंट इधर दौड़ेगा एक ऊंट इधर दौड़ेगा। अबू जहल सामने खड़ा है, जब ऊंटों को दौड़ाया तो खुद नेजा मारा बीबी समैया की शर्मगाह में और बीबी साहबा दो हिस्सों में चीर दी गई। ऑपरेशन नहीं, छुरी से नहीं काटा गया, तलवार से नहीं काटा गया, ऊंटों ने ताकत से चीर, जैसे मुर्गी को पकड़ के आप यूं चीर। लेकिन उस वक्त भी उसकी जबान पे था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अव्वल शहीदतिन फिल इस्लाम, इस्लाम की सबसे पहली शहीदा है जो इस्लाम के रस्ते में शहीद। यानी तहजीब की कोई हद है? हजरत खब्बाब इब्न अल अरद रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन बैठे थे, सहाबा ने कहा कि हजरत खब्बाब हमें अपने इब्तदाए इस्लाम की भी कोई बात सुना। हजरत खब्बाब इब्न अल अरद ने बताया क्या किया, आपने फराफा सौबहू अन ज़हरिही, आपने अपनी पुश्त से कपड़ा उठा लिया। कहा पुश्त से क्या पूछते हो, मेरी पुश्त देख लो, मेरी पुश्त पे पूरी इब्तदा इस्लाम की तारीख लिखी हुई है। सहाबा कहते हैं जब हमने आपकी पुश्त को देखा तो उसमें ऐसे गड़े पड़ चुके थे, ऐसे गड़े पड़ चुके थे ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐसे जैसे गड़े होते हैं और पूरे अंदर तक गड़े पड़े हुए और सियाह। हत्ता के हजरत उमर जैसा आदमी, हजरत अमीर अल मोमिनीन उमर जैसे आदमी कहते हैं कि मुझसे सबर न हो सका, मैं रो पड़ा और वल्लाह मारा है तो खुदा की कसम ऐसी पुश्त किसी इंसान की मैंने नहीं देखी थी। मैंने कहा खब्बाब ये क्या है, उसने कहा इस्लाम के लिए जब हम अल्लाह का नाम लेते थे तो जालिम कुफार जो थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अंगारे अंगारे बनाए, अंगारे बनाकर, और अंगारे पता है कैसे बनाए गए, ये लकड़ी के अंगारे नहीं, उन्होंने पत्थर लेके आग में रखे, पत्थरों को आग में रखा और पत्थर जब आग की शिद्दत से सुर्ख हो गए, अंगारा बन गए पत्थर, जब अंगारा बन गए तो मेरे कपड़े उतार के मेरी टांगों से पकड़कर मुझे उन पत्थरों पे खींचा, और जब मुझे खींचा जाता था तो जहां जहां पत्थर जलता था जला के अंदर गड़े पड़ जाते थे और अंदर से जो मेरी पीप बहती थी उसी से वो अंगारे बुझते थे, कोई छुड़ाने वाला भी नहीं होता था। और एक दिन आवना के लाल सरकारे दो आलम

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: और सारी दुनिया सीधी बात है कि वो बुराई की तरफ जाएगी, तकरीर सुनने के लिए कौन आएगा। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि मैंने आपको तकलीफ भी दी और कुछ लोग भी नहीं आएंगे। बस यही है कि आप इशा की नमाज वहां मस्जिद में पढ़ा दें और उसके बाद दुआ फरमा दें, बस। आप तो तशरीफ ले आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन जब आदमी ही कोई ना हो तो बंदा आखिर तकरीर किसको करे, और मस्जिद में वो दो चार आदमी जो होंगे वो तो पहले से आपके मुतकलीन में है, हमेशा दर्द सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं। बस हम कहा ठीक, मस्जिद में तशरीफ ले गए, इशा की नमाज पढ़ी। तो बाकी ठीक सी बात थी कि वहां यानी ज्यादा से ज्यादा 10 आदमियों के बजाय 20 आदमी हो गए। जब सलाम फेर के सुन्नतें वगैरह पढ़नी और दुआ का वक्त आया तो वाले साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, 10 हूं या 20 हूं, आप आए तो हैं, अल्लाह के नबी तो एक एक आदमी को जाके कुरान सुनाते थे, मेरे सामने तो कम अज कम 20 आदमी बैठे हैं। तो अल्लाह ने वाले साहब को बड़ी आवाज दी थी माशाल्लाह। तो उन्होंने जब कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया तो एक गाने वाली जो थी वो गा रही थी, तो उसके कान में आवाज पड़ी। तो उसने लोगों से पूछा कि ये क्या आवाज है। उन्होंने कहा एक आलिम है और वहां कोई तकरीर है, मौली शौली मुल्ला शुल्ला किस्म का आदमी है, कुरान पढ़ा है। उसने कहा कि मैं तो कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती, आप लोग जहन्नम जा सकते हैं, तो क्या है? मैं तो अल्लाह के कुरान का मुकाबला नहीं। और उसने कहा कि देखे नहीं, मुझे पैसे दें या ना, गाना बंद, जब तक अल्लाह का कुरान पढ़ा जाएगा और तकरीर होगी मैं नहीं गाऊं किसी भी शक्ल। अल्लाह के कुरान के मुकाबले पे शैतान का काम। और उसके बाद फिर वो बाकायदा वहां से मजलिस छोड़ के चादर एक डाल के जहां वाले साहब तकलीफ फरमा रहे थे वहां आई और तब सारा मजमा लौट आया, क्योंकि वो गाना वाना तो बंद हो गया। तो वहां आके उसने रिक्वेस्ट की कि जी मैं पीछे बैठ के कुरान सुन सकती हूं। कहा कि हाँ सुने, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अल्लाह का कुरान जब पढ़ा जाए आदमी कितना खराब क्यों ना हो, आखिर इंसान है। ये अल्लाह के कुरान की तासीर है कि मकनातीसुन लिलकुलूब, अल्लाह ने जैसे काबे को बनाया है ना दिलों का मकनातीस, इसी तरह कुरान दिलों को बदलने वाला। शर्त यह है कि जरा आप कुरान को मोहब्बत से और इखलास से पढ़ें, एक रस्म समझ के ना पढ़ें। जैसे बहुत सारे मुल्क हैं उनमें कुरान मौजूद, और इतनी में पढ़ रहा एक अजाब में पढ़ रहा था कि हॉलैंड के एक इलाके में जब राबता आलम इस्लामी का एक वफद पहुंचा तो वहां पर जब गए तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ एक मस्जिद है, और मस्जिद में गए और फिर उन्होंने अपने इमाम मस्जिद से तारुफ कराया कि जनाब ये हमारा इमाम। ठीक, बातचीत होती रही। अब इस असना में जुहर की नमाज का वक्त आ गया तो राबता के वफद वालों ने कहा कि भी चूंकि यहां का इमाम मस्जिद मौजूद है तो आप सिर्फ ये ना समझें कि चलो भाई हम मक्का शरीफ से आए हैं लिहाजा हम नमाज पढ़ाएं, नहीं, इमाम मस्जिद जो है वो हक है, लिहाजा वो नमाज पढ़ाए। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम तो वैसे भी 2 रकात पढ़े।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त तो हमारे थिंक टैंक सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, वो आपके लिए मौसम, बीमारियाँ, कोरोना वायरस, सियासी बीमारियों का इलाज लेकर आते हैं, तो उनके पास चलते हैं। शाह साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं साथियों के साथ।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिस्टर नाजरीन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने कहा कि हम मौसम का भी हाल बताते हैं और सियासी बीमारियों और सियासी तब्दीलियों का भी हाल हम बताते हैं कि कोपनहेगन में क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। आज 17 से 18 यानी 19 के दरमियान मौसम जो है वो गर्म है, इतनी सर्दी नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत मौसम है, सूरज निकला हुआ है, लोग घूम फिर रहे हैं, लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए कि ये पतझड़ का जमाना है, जिसको पंजाबी में कहते हैं पतझड़, यानी कि अब तब्दीली आ रही है दरख्तों पे, नबातात पे, हर चीज पे तब्दीली आ रही है। इसी तरीके से इंसान के अंदर भी तब्दीली आती है, उसको हम कहते हैं फ्लू या इन्फ्लुएंजा का हम उसको नाम देते हैं, कि हमारे अंदर जो जिस्म के मुख्तलिफ हमारे जो जोड़ होते हैं उसके अंदर जो झिली होती है वो उसको रेशा भी कहा जाता है, वो तब्दील होता है। ये कुदरत का एक निजाम है, जैसे पतझड़ होता है इसी तरीके से, और वो इंसान के अंदर तब्दीली लाता है। और ये हमेशा जब पतझड़ का जमाना हो या खजा का बहार का मौसम आता है, तो उस वक्त भी आप देखते हैं कि ये चीजें इंसान के अंदर तब्दीली लाती हैं। तो लिहाजा हमें एहतियात करनी चाहिए, थोड़े से ऐसा गर्म कपड़े पहनने चाहिए ताकि हमें जो है वो मौसम की जो तब्दीली है वो हमारे जिस्म पे असर ना करे। दूसरी चीज ये है कि 1 अक्टूबर से जो इन्फ्लुएंजे का टीका है और अपना कोरोना का टीका है, ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। आप अपने डॉक्टर से नहीं लगवा सकते, लेकिन आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से हॉस्पिटल में या कौन से स्कूल में या कौन सी अपोथेक के अंदर ये टीके लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जो हम हर दफा देते हैं वो ये है कि अगर आपको कोई क्रोनिक सिकनेस है, कोई ऐसी पेचीदा बीमारी है, डायबिटीज है, खुदा ना करे किसी को कैंसर, कोई ऐसी चीज है घर में, तो वो खुद अगर उम्र सीधा है, अब उसको इजाजत आई है कि वो अपना लगवा सकता है वैक्सीन, तो वो जब अपना टाइम स्टेल कराता है, अपना टाइम लेता है, तो उसके साथ वो अपनी बीवी या अपने घर रहने वाले बच्चों को साथ लेके जा सकता है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा, क्योंकि उनको आप ये कह सकते हैं कि भाई हम एक घर में रहते हैं और अगर इनमें से किसी को फ्लू हो गया या कोरोना हो गया तो क्या मुझे भी नुकसान होगा, तो वो लगा देते हैं। आपको सिर्फ प्यार से बात करनी है, कोई रिफ्यूजल नहीं होता, बाज़ औक़ात किसी का मूड अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एहतियात करते हैं और होता है इस तरीके से। और मैं खुद लगवा के आया हूँ, पहली को लगवाया है, कोरोना का भी लगवाया है और फ्लू का भी, कोई रिएक्शन कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये है कि कभी अगर बाहर निकलते हैं, पब्लिक में जाते हैं, किसी को ये नहीं आप कह सकते कि भाई तुम ये तुम्हें फ्लू हुआ, तुम सड़क पे क्यों घूम रहे हो सकता है वो फ्लू के साथ कोरोना की, देखिए आगे कोरोना की एक किस्म थी, अब कोरोना की 8-9 किस्में हैं और आपको नहीं पता लगता ये कौन सा है। किसी कोरोना के साथ आपको पेट खराब हो जाता है, जिसको हम पेशेंट कहते हैं, थिन में वो कहते हैं, वो आपको हो जाता है, किसी के साथ बुखार हो जाता है, किसी के साथ आपका पूरा जिस्म टूटने लगता है, ये डिफरेंट काइंड के जो है इनके वायरस हैं। लिहाजा ये एहतियात करनी जो है ये बहुत जरूरी है, कोशिश करें और हमेशा आगे चल के रहें। और अगर अभी ये पतझड़ की जो है आफ्टर हाउस की ये फेरी अभी शुरू हो रही है, तो इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेवल करते हैं, वहां वो एक हफ्ते के लिए करें या दो हफ्ते के लिए करें। तो बराए मेहरबानी सबसे बड़ी बात यह है कि आप बच्चों को अगर साथ दे के जा रहे हैं तो उनके स्कूल को लाजमन अवेयरनेस दें, और अगर आप खुद जा रहे हैं फिर भी आप अपनी बॉस सर्विस को, अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी बॉस सर्विस को इतला करें कि भाई हम इस स्टेट से इस स्टेट तक राइजर कर रहे हैं और हमारा, और अगर आपको फेरिया पीरियड है फिर भी आप दिखाएं कि हम इस टाइम से हमारा फेरिया पीरियड स्टार्ट हो रहा है और इस पीरियड पे हमारा फेरिया पीरियड एंड होगा और हम फलाने मुल्क के अंदर जा रहे हैं। और ये बताने से वहां पे लिख जाता है कल को खुदा ना खासा आप वहां पे कोई बीमार हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है कि इंसान को जरूरत पड़ जाती है मदद की, तो वो डेनमार्क की जो वहां की एम्बेसी है या डेनमार्क के कोई भी वहां पे अदारे जो फंक्शनल हैं वो आपकी मदद को फौरन आ जाते हैं और इस तरीके से वो आपको डेनमार्क वापस ले आते हैं। ये जितने भी लोग येलो कार्ड रखने वाले हैं या अपना नेशनलिटी रखने वाले हैं सबके लिए बराबर के हकूक हैं, लेकिन हकूक उस वक्त आपके चलेंगे जब आप इनको ऑफिशियली बता कर जाएंगे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नहीं हम क्यों बता के जाएं, हम तो ये कर रहे हैं, जब वो ये जालसाजी करते हैं तो उसका नुकसान बहुत सारा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, आपने ये देखा है कि अभी जो इमाम आरूस में पकड़ा गया है उसकी कितनी वीडियोस अपलोड हुई है, कितनी मीडिया ने उसकी बेइज्जती की है, उसने कहा कि तुम आप खिलाफत ला रहे थे इस मुल्क
1: के अंदर। तो कानून काम कर रहा है तो कानून अपना रास्ता लेता है और कानून जो हरकत में आता है। तो शाह साहब छुट्टियों का आपने जिक्र किया, आप भी छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, तो शाह साहब जरा अपना एजेंडा तो बताएं।
2: जी हमारा एजेंडा जो है वो यहाँ की सियासत पे भी है, यहाँ की सियासत पे हमने बिल्कुल काम करना है और यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो कैटेगरी 5 है उसके ऊपर हम पे क्या हमें परेशानियां लाहक हैं और उसके ऊपर इंशाल्लाह पूरा मंसूबा है और पूरा उस पर अमल दरामद हो रहा है। मीटिंगों के लिए टाइम ले लिया गया है और जाने से पहले ही, ताकि कोई बहाना ना तलाश करें कि भाई वहां जाके वो जी फलाना नहीं मिला, वो लंदन चला गया, वो अमेरिका चला गया, वो छुट्टियों पे चला गया, तो सारे प्रोग्राम सेटल हैं इंशाल्लाह वहां जाके। तो ये कैटेगरी 5 के ऊपर भी जो है ये बात खुल के होगी और अपने फॉरेन मिनिस्ट्री और दूसरे अदारों से भी मुलाकातें जो है वो मुकर्रर हो चुकी हैं, तो इस पे हम बात करेंगे। ये वो कल करें, परसों करें, चौथ करें, दो साल के बाद करें, लेकिन इसके ऊपर आवाज जो है वो बुनियादी तौर पे वहां से शुरू होगी। और ये हम सिर्फ किस्से कहानियां नहीं कर रहे, हम लोग वहां पे वहां से लाइव जो है वो बकायदा वीडियो नशर करेंगे और बकायदा लाइव वहां से इंटरव्यूज करेंगे कि जो यहाँ आप लोग किसी भी दिन हो सकता है, सोमवार को हो, मंगल को हो, बुध को हो, किसी दिन भी हो सकता है, तो वो लाइव आप यहाँ पे आप जो रेडियो आपकी आवाज है इसके ऊपर आप सुन सकेंगे, आप देख सकेंगे कि ये चीजें जो है जो हमने बात की है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये काम जो ऑलरेडी वहां पे शुरू हो चुका है उसको हमारे जरिए से वो हम उसको पाया तकमील तक, जब मुलाकातें होंगी उनको जो रिटर्न देने हैं, जो उनको सारी तकलीफात हैं यहाँ की फैमिलीज की, इंश्योरेंसों की, दूसरी वो सारा कुछ कैटेगरी 5 की वजह से जितनी भी तकलीफात हैं उसके ऊपर खुलकर वहां पे बात होगी इंशाल्लाह।
1: जी शाह साहब, ये तो आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। शाह साहब, सिटी काउंसिल ने 2027 के बजट पर दूसरी बार गौर किया है। कोपेनहेगन कम्यून में बजट पर आम पेशरफ्त, रिहाइश, स्कूल, समाजी शोभा जहाज, शहरी सहूलियात तवज्जो का मरकज बने, पार्किंग की भी बात हुई। तो शाह साहब, ये जो बजट पर दूसरी बार बातचीत हुई है, बजट ने पास भी होना है, उस पर अमल दरामद भी होना है, आपके पास क्या खबर है?
2: देखिए जी, सबसे पहले तो हम ये इतला करते हैं कि जो सबसे बड़ी खबर है यहाँ की ब्रेकिंग न्यूज वो है वो कि हमारे जो स्पीकर हैं हमारे पार्लियामेंट के, सॉन गिल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये बड़ी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि वो वेंसा पार्टी के बड़े मशहूर सियासी खिलाड़ी हैं और बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको पता है कि वेंसला के अंदर पिछले डेढ़ दो माह से तब्दीलियां आ चुकी हैं और दूसरी पार्टीज के अंदर भी, क्योंकि ग्रीनलैंड को लेके और उसके साथ अंदरूनी हालात देखे मुल्क के, इस वक्त पार्टीज के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीलियां, बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही हैं और पार्लियामेंट के अंदर भी। इसी तरीके से जो आपका सवाल है ये बहुत रेलिवेंट है। यहाँ पे जो चीजें रखी गई थी उनको दोबारा गौर किया जा रहा है कि हम लोगों लोग जो है वो पहले जो बजट पेश किया गया उससे नाराज लगते हैं, बाद पार्टियां उससे खुश नहीं। उससे ये मसला सामने आ रहा है कि कहीं ये पार्टीज जो है ये दोबारा जो सामा आबाद कर रही है, कहीं ये साथ ना छोड़ दे और हुकूमत जो है वो क्रैश ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ की जो सोच है वो काफी तब्दील हो रही है, क्योंकि जो बड़े लीडर हैं इस वक्त वो ये चाह रहे हैं कि हम यूरोप के अंदर जो यूरोप की पार्लियामेंट है उसके अंदर अपने कदम जो है वो मजबूती से रख लें और हम वहाँ कोई ना कोई पोस्ट जो है वो ले लें, ताकि यहाँ से गुड बाय होने के बाद हम वहाँ पे काम कर सके और अपने इन्फ्लुएंस जो है उसको कायम दाग रख सके। लेकिन अब यहाँ पे प्रेशर हो रहा है कि यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे यूरो की आवाज उठ रही है कि लोग कहते हैं जी कि यूरो रखो, लिखा भी जा रहा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी डेनिश का ग्राउंड ही हमारी पहचान है। लेकिन हर मुल्क की अपनी अपनी पहचान थी, उन्होंने जब फिल्स एक पूरा यूरोप बनाया तो उन्होंने अपनी पहचान को खत्म करके तो यूरो को अपनाया, तो डेनमार्क को भी आखिर यूरो में जाना पड़ेगा और यूरो को लाना पड़ेगा, क्योंकि इससे इकोनॉमिकली जो चीजें हैं वो काफी बेहतर होंगी। एक्चुअली डेनमार्क ने जो इनकार किया था यूरो में आने का, इसका मकसद यह था कि इंग्लैंड और यूरोप से जो बड़ी बड़ी फर्में हैं वो भागकर डेनमार्क आ जाएंगी और यहाँ पे उनको काफी सहूलियात मिलेगी और यहाँ पे बड़े बड़े बैंक आ जाएंगे। लेकिन वो क्योंकि सियासी ना तजर्बा कारी की वजह से यहाँ के जो सियासतदान हैं वो इनको ये चीजें सामने पेश नहीं कर सके, तो वो लिहाजा कुछ वहीं रहे, कुछ दूसरे ममालिक में जो बहुत ही सस्ते हैं, बुल्गारिया दूसरे आगे पीछे, वहां पे वो चले गए और उन्होंने अपने कदम वहां पे जमाने शुरू कर दिए, क्योंकि वो उनको काफी सस्ते लगते हैं। और इसी तरीके से अब यहाँ के जो माशियाती अदारे हैं वो लिखते कुछ हैं और बताते लोगों को बताते कुछ हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो गुर्बत की लकीर जो है उससे भी नीचे अब लोग जो है वो इस महंगाई के जमाने में रहना शुरू हो चुके हैं और उनके हालात बहुत ही गंभीर हैं। लेकिन क्योंकि इनके पास अब बेचने के लिए सिर्फ ईमानदार प्रॉब्लम रह गई थी उसके ऊपर ये बात करते हैं, लेकिन वो भी अब इनके इनके लोग अब इनको सुनने को तैयार नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं। तो राजा साहब ये जो बजट है इसके अंदर काफी फॉल्ट्स हैं और काफी चीजें ऐसी बजट में रखी गई हैं
1: कि जो 70 मिलियन का बजट जो है वो रखा गया है पार्किंग के लिए और उसके बाद सरसब्ज बनाने के लिए, सहूलियात इलाके को खूबसूरत बनाने के लिए, ग्रीनरी के लिए रखा गया है। तो ये तो खबरें आ रही हैं, जब बजट पास होगा तो ऑफिशियल बात तो उसी वक्त जो है वो सामने आएगी।
2: देखिए जी, जो 70 मिलियन रखा गया है तो ये पार्किंग का ये क्यों रखा गया है? वो जो पार्किंग सेल्स के बारी है, जो बाहर की सेल्स के हैं, वो डेनमार्क में आके पैसा कमा रही है, ये उनका काम बनता है कि वो अपने पास से पैसा लगाए और फिर वहां से वो बनी बनाई पार्किंग लेके हमारे टैक्स पेयर के पैसों से वो
1: की जगह होगी तो पार्किंग प्लेस वो बनाएंगे ना।
2: देखिए जी, पार्किंग की जगह इंतहा से ज्यादा पार्किंग प्लेस हैं डेनमार्क में, लेकिन क्योंकि सियासी वजूहात की वजह से लोग जो सियासत में हिस्सा लेते हैं वो कभी खुद जाकर वहां पे फुटप्रिंट नहीं रखते, वहां पे जाके कदम नहीं रखते, देखते नहीं, वो बैठे हुए ना तजर्बाकारी की वजह से वो हाँ या ना कर देते हैं। तो उससे जो है जो अमीर लोग हैं, जो बिग फर्में हैं, बड़ी बड़ी इमारती बिल्डिंग्स बनाने वाली फर्में हैं वो, और इस तरह की दूसरी जो पार्किंग फर्में हैं वो पैसा कमा रही हैं। लगता पैसा गवर्नमेंट का है तो वो उसको कहते हैं या आप जगह हमें पार्किंग आपने बना लीजिए, ठेक पे हमें दे दे, अब हम इसको हम आपको फायदा देंगे। वो खुद ज्यादा पैसा ले जाते हैं, टैक्स भी नहीं पे करते, और गवर्नमेंट को थोड़ा सा पैसे चंद मिलियंस दे के, 100 मिलियन दे के, तो वो लोगों की जो नर्व सिस्टम है उसके ऊपर उन्होंने लोगों की इकोनॉमिक जो है उसको खत्म किया है। आप इस वक्त देखें कि कोपनहेगन में आप कोई भी घर देख लें, कोई भी घर देख लें कि उसके पास उतनी, अगर उनके पास एक या दो गाड़ियां हैं तो कम से कम वो 8-9 हज़ार करोड़ जो है वो सालाना दे रहे हैं, और अगर वो इसी तरीके से हौसलाए भी दे रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो वो टैक्स कम दे रहे हैं तो डेनमार्क के अंदर, कोपनहेगन के अंदर, लेकिन जो रिहायश है और जो उसके साथ
1: सवाल पैदा होता है, पार्किंग की बहुत बात की जाती है, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनी हुई है इनके नीचे पार्किंग मौजूद है, तो लोग पार्किंग के नीचे गाड़ी खड़ी नहीं करते, वो गाड़ियां बाहर खड़ी करते हैं। इसी तरह अगर वेस्टर्बो गेट में देखे जाएं तो ये एक कॉलेज बना हुआ है और उसके नीचे जो है अच्छी खासी पार्किंग है, बेशमार पार्किंग है, या वो नीचे पार्क करेंगे तो गाड़ियां बाहर पार्क करेंगे तो शहर में दिक्कत होगी, तो वो पार्किंग जो बिल्डिंग के नीचे है शाह साहब वो सस्ती करनी चाहिए ताकि बिल्डिंग वाले खुद नीचे पार्क करें।
2: हाँ, ये सवाल आपका ठीक है, वो करें। वो ये है कि आप ये देखें कि और दूसरी जगह और कोपनहेगन में जितनी बिल्डिंग्स नहीं बनी है उसके अंदर आपको नीचे पार्किंग प्लेस खरीदनी पड़ती है, आप उसको खरीदें या उसको लाए करें। अगर आप उसको खरीदते हैं और उसको जैसे आपने ऊपर फ्लैट खरीदा है इसी तरीके से आप उसके पैसे देंगे बकायदा, और वो फिर आप अपनी गाड़ी वहां पर खड़ी कर सकते हैं। और दूसरी चीज है, अगर आप उसको लाए करते हैं तो वो लाए बहुत महंगा है, तो फिर लोग जो है वो मजबूरन बाहर खड़ा कर देते हैं और दूसरी जगह पे ऐसी स्ट्रीट को फाइंड आउट करते हैं जहां से वो पैदल चल के अपने फ्लैट तक आ जाए ताकि उनको ना जुर्माना लगे ना। इसलिए पार्किंग प्लेसों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, और ये जो बिल्डिंग बनती है और बिल्डिंग्स के साथ जो इन्होंने बहुत पार्किंग प्लस जो है वो दूसरा, आप ये देखें कि मेजोरिटी इस वक्त मेजोरिटी आप बड़े बड़े फ्लैट्स के ऊपर जाते हैं जहां पहले फ्री पार्किंग होती थी, अब वहां पे क्या, अगर आप एज ए गेस्ट भी जाते हैं तो पहले जिसके घर आपने जाना है विजिट करने के लिए वो कार्ड लेके खड़ा होगा कि भाई आप हमारे घर में गेस्ट आए हैं और इतने बजे आए हैं और इतने बजे आपने जाना, वो आपकी गाड़ी के अंदर कार्ड रखेगा फिर आप वहां पर खड़ा कर सकते हैं, नहीं तो तकरीबन 1,000 के करीब आपको जुर्माना लग जाएगा। और ये चीजें जो है ये कौन कर रही है,
1: ये कम्यून कर रही है चाहिए ना, क्या ये जिम्मेदार लोग नहीं है जो कम्यून में बैठे हुए हैं, या इनको इतने जो इतनी जो दुश्वारियों का पता ही नहीं है,
2: ना तजर्बाकारी, स्कूलों में से, कॉलेज में से, यूनिवर्सिटी में से पढ़ के बाहर आ गए हैं, तजर्बा है नहीं है, पब्लिक का तजर्बा है नहीं है, लोगों के रहन सहन का तजर्बा है नहीं है, कोई सोशल वर्क किए हुए नहीं है। जी मैं चंद ऑर्गेनाइजेशन का मैं मेंबर बन चुका हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वहीं से वो डिबेट करके बाहर आ जाते हैं, उनको इन चीजों का तजर्बा नहीं, उनको आवाम की मुश्किल का बिल्कुल पता नहीं, इसलिए वो ये चीजें जो है वो उनकी समझ से बाहर होती है। और फिर अगर उनको थोड़ी बहुत समझ भी है तो वो कौन सा बजट में ये पढ़ते हैं कि कौन सी पार्किंग में कौन कौन से इलाके में ये पाबंदियां लगनी चाह रही है, वो तो बस खामोश हो जाते हैं। और जो फोरमैन होते हैं या जहां वहां पे उनके जो बंदे बैठे होते हैं उनकी छोटी पार्लियामेंट के अंदर, कम्यून के अंदर, तो वो तो यस सर करते हैं, वो इसलिए कि उन्होंने बैनिंग की होती है, वो उन्होंने पार्टियों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया होता है, मुआहदा किया होता है कि हम आपस में मिलकर ये सारा काम जो है इसको लाएंगे, तो वो तो उनको तो हर दफा पता होता है कि भाई अगली दफा भी हम नंबर वन ही होंगे, टॉप पे होंगे, खसमन खाई ये नीचे वाला कैंडिडेट जो दूसरे बैठे हुए हैं इनको हो सकता है ये आए या ना आए, मैं तो 100% जो है वो अगली दफा भी मेरी सीट जो है जो काउंसलर पक्की है, तो वो जो है वो इस तरह की बातें ना डिक्लेयर करते हैं ना ही उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, तो ये चीजें जो है ये प्रॉब्लम है।
1: लगता है कि आपकी बातों से लगता है आप भी वेंस्टा को ज्वाइन करेंगे, अगर ज्वाइन करते हैं तो किसके कंधे पर हाथ रखेंगे, आजकल तस्वीर बाहर आ रही है लोगों ने लीडरान के कंधों पर हाथ रखा हुआ है।
2: जी बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं इंशाल्लाह वेंस्टा को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, और मैं सिर्फ एक लकीर के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर मैंने अभी तक मेंबरशिप नहीं दी, लेकिन अगर वो मुझे मेल आ जाती है ये अगले हफ्ते आ जाती है या चंद दिनों के अंदर आ जाती है तो मैं इंशाल्लाह
1: ताला ये इस हफ्ते की ब्रेकिंग न्यूज है
2: जी बिल्कुल। वेंसा जो है वो आपने देखा है कि वेंसा के अंदर जो इनकलाब आया है और वेंसा के साथ आपको पता है कि यहाँ पे दूसरी भी जो यहाँ के पाकिस्तानी सियासी जात में जमात में भी इनकलाब आया, तो इंशाल्लाह इनकलाब आएगा। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया और अक्टूबर में मैंने आपको पहले ही आपके रेडियो पे कहा था कि एंड ऑफ अक्टूबर और नवंबर में बहुत ज्यादा सियासी इनकलाब आएगा, क्योंकि मेरा जो टूर होगा पाकिस्तान का और यहाँ का
1: तो मैं इनकलाब का हिस्सा है
2: जी। बिल्कुल ये इनकलाब का हिस्सा है। आप देख लेंगे सॉन्ग गेल ने बहुत अच्छी बात की है कि उसे फॉरमैनशिप से अपना इस्तीफा दे दिया फलकीर सिंह के, अब वो खुलकर पार्टी के अंदर काम करेगा। पार्टी को पुराने लीडरान की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि यहाँ पे मसला जो है वो सिर्फ लैंडमैन का नहीं है, काश्तकार का मसला नहीं है, यहाँ के जितने भी बिजनेसमैन है वो भाग रहे हैं, यहाँ के पढ़ा लिखा लोग जो है वो भाग रहे हैं मुल्क को छोड़कर। ये यहाँ पे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। जैसे आप अभी ये देखें कि वो जो हमारी एक बच्ची जो है वो अदालत में ये सर पे दुपट्टा डाल के थोर कलर पहन के वो नहीं जा सकती, तो उनको राइट होना चाहिए कि हर बंदे को साइयों में
1: ये कानूनी फाइट है, कानूनी फाइट होनी चाहिए।
2: नहीं कानूनी नहीं है, आईन आईन इसकी इजाजत नहीं देता, आईन इसकी इजाजत नहीं देता, आईन इसका औरत के जो लिबास है उसके हकूक की तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो हम कानून को, मैं कानून की बात नहीं करता, मैं आईन की बात करता हूँ कि जिस चीज में आईन तहफ्फुज़ दे रहा है और उसके ऊपर बात की जा सके तो उसके ऊपर यह कानून जो है
1: डिबेट है चलती रहेगी। शाह साहब आखिर में क्या कहेंगे कि हमारे लोगों को क्या करना चाहिए इन हालात में?
2: हमारे लोगों को ये चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा वो इकट्ठे हो सकते हैं और कोशिश ये करे कि ऐसा कोई काम ना करे जो गैर शरी हो, गैर कानूनी हो। कोशिश ये करेंगे जो इस वक्त सबसे बड़ी तीन चीजें जो है जिसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, एक तो ये कि जिन्होंने डेनिश डिवोर्स ली हुई है और इस्लामिक तरीके से इकट्ठे रह रहे हैं वो इससे पर्दा करें और इससे जो है वो पीछे हट जाए, क्योंकि डिवोर्स डिवोर्स होती है, ख्वाह वो डेनिश हो ख्वाह वो किसी तरीके से हो, तलाक का वो करें, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ कोपेनहेगन में उन्होंने जो नंबर इशू किए हैं वो तकरीबन 10,000 के करीब है और इसमें सारे जो है वो ज्यादातर मुसलमान आ रहे हैं, तो ये उनकी तादाद है, तो इससे दूर है। नंबर दो पे जिन्होंने फौज पेंशन ली हुई है, बीमारी की पेंशन ली हुई है, वो अपने डॉक्टरों के पास रेगुलरली जाएं, उनको अपनी बीमारियों के बारे में बताएं जो सही है, और जो वो दवाइयात लिख के देते हैं वो मेडिसिन वो जरूर लें, क्योंकि अगर वो मेडिसिन नहीं लेते और सिर्फ इस पेस पे कि वो मैगी मिलती है और वो नहीं ले रहे तो फिर उनका जो है वो पता साफ है, उनके ऊपर केस बनेंगे, उनको सब पैसे, क्योंकि ये चीजें जो है कम्यून का और डॉक्टर का।
1: दवाइयां जो है वो मुफ्त नहीं होनी चाहिए, अगर सही पेशेंट है तो पेशेंट के लिए, या अगर अस्पताल में इलाज फ्री है तो बाहर क्यों नहीं है?
2: क्योंकि वो आपका रेडियो नहीं ना सुनते, वो समझते हैं कि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये बकवास कर रहे हैं, ब्लफिंग कर रहे हैं। अगर जिसको फॉर्ज्ड पेंशन मिली हुई है या जो जिसकी होम इकोनॉमिक इतनी ज्यादा नहीं है, इतना घर का पैसा ज्यादा नहीं, तो वो वहां पे जाके कह सकते हैं कि भाई देखें अपनी बॉस सर्विस में कि हमारी मदद की जाए, तो वो देखते हैं, फिर वो इकोनॉमिकली देखते हैं कि भाई इस आदमी ने वाकई इसके इतनी दवाइयां हैं, इसकी दवाइयां महंगी हैं, तो वो फिर आपको बकायदा उसमें परसेंटेज जो है आपको लगाते हैं, कभी आपको 85 या 70% से ऊपर ऊपर जितने भी हैं वो दवाइयां महंगी हैं वो आपको सस्ती करते हैं, आपको 85% भी देते हैं, तो उसमें आपको चंद एक करोड़ के दवाइयां मिलती हैं, तो बेशक वो 800-900 करोड़ की हो आपको 50-60 करोड़ में मिलती है। तो ये चीजें जो है जो आप वहां पे जाएंगे
1: कानून से फायदा उठाना चाहिए, कानूनी फाइट करनी चाहिए, और हमारे सिटी काउंसिलर जितने भी हैं जिस जिस कम्यून में बैठे हुए हैं उन्हें भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, दोबारा अगले प्रोग्राम में शामिल होंगे।
2: शुक्रिया जी, बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़ जी।
1: सामान नाजरीन ये थे सैयद तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब। सामान नाजरीन हमारा मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आपके पास कोई दलायल है तो आपके लिए आपकी आवाज़ का टाइम आज।
3: सामान कराम FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: समय हमने इंफॉर्मेशन के लिए प्रोग्राम बनाए, काफी बनाते रहते हैं, इलेक्शन को कवर किया, स्वीडन के इलेक्शन की बात की, चूंकि स्वीडन के इलेक्शन की इसलिए बात हो रही थी चूंकि वो कम्यून के भी इलेक्शन थे, आमद के भी इलेक्शन थे, पार्लियामेंट के भी इलेक्शन थे, उस पर हमारे उम्मीदवारों ने भी हिस्सा लिया, चूँकि वो डैनिश दोहरी शरीयत का भी मसला था, वोट दोनों तरफ देने का हक था, अम्बेसियों में भी आप वोट दे सकते थे और उसके अलावा जाकर वोट आप डाल सकते थे, तो जिसको वोट का हक मिला होता है उन्होंने वोट अपना डालना होता है। तो इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इस चीज़ों को प्रोग्रामों में हिस्सा भी लिया है, चीज़ों को बड़े करीब से भी देखा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरी मुराद है शायद नसीम, शायद एक बार फिर आपको

0: बैठी हैं, साजिशें कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ।
1: नहीं वो भी तो मजा आता है लोगों को ना, वो भी तो कॉपी है ना, अभी अच्छी लगती है,
0: वो भी कॉपी है।
1: अच्छा शायद बताएं, स्वीडन के इलेक्शन हो गए, सारी चीजें तस्वीर सामने आ गई, और मेम्बरान जो बने या ना बने, हुकूमत भी अभी बनी नहीं, जिस तरह डेनमार्क की 4 महीने लगे थे बनते बनते, आपकी भी यही लगेंगे?
0: हमारे आज से 4 साल पहले स्वीडन के इलेक्शन हुए थे, यही वाले 4.5 साल पहले, बात 4 साल पहले की बात है। तो तब हमें 5 माह लग गए थे तकरीबन गवर्नमेंट बनते हुए, 5 माह से ज्यादा, आपको शायद याद हो। ये आज 2026 से 2022 की बात है, बात 4 साल बाद इलेक्शन दोबारा हुए हैं। तो स्वीडन का ये मैंने आपको बताया था लास्ट, जब मेरी आपके यहाँ पर इंटरव्यू आप हो रहा था आपके दोस्त से, तो उसमें 2 से 4-5 मेहमान और भी थे, तो मैंने आपको बताया था कि स्वीडन की जो पिछले 10-12-15 सालों से आप ले जाए, बल्कि 20 सालों से ले जाए, इनकी सियासत मीडिया और लॉबिंग के गिर्द घूमती है। पहले इसको खास तौर पर मीडिया इसको जो है ना मीडिया के जरिए इसको इसकी लॉबिंग कराई जाती है, फिर इसको खास जो क्या कहते हैं एक ग्रुप है उसके जरिए इसकी लॉबिंग पूरे स्वीडन में कराई जाती है, और फंडिंग इसकी बाहर से होती है, मैंने आपको बताया था। तो वो उसके मुताबिक वो चल रहे हैं, गवर्नमेंट वो कभी भी एक आने नहीं देते जिसके जिसमें 2/3 सीटें या ज्यादा सीटों से एक आसानी से कोई गवर्नमेंट एक वो बना ले, तो वो ऐसे ही रखते हैं कि इसको। मैं यही देख रहा हूँ कि पिछले 10-12 सालों से इसको वो बराबर ही लेके जा रहे हैं, यानी जो भी इलेक्शन होता है उसमें एक का फर्क होता है या बराबर कर देते हैं उसको, या फिर उसके बाद वो होता है कि वही जो ब्लॉक है रेड है या ब्लू है, 2 ब्लॉक है, वही ब्लॉक जो थोड़ी सी सीटें लेके जीता भी है तो उसी ब्लॉक के अंदर उसी के खिलाफ उसका अपना अपने ब्लॉक की दूसरी पार्टी आ जाती है, तो फिर ऐसे गवर्नमेंट नहीं बनती, फिर जो है ना वो काम जो मामला है ना वो वहां पर ही क्या कहते हैं पढ़ा के 4-5 माह तक या इससे ज्यादा भी जा सकते हैं। तो आप कभी कहते हैं कि वही वाली गवर्नमेंट दोबारा आ जाएगी जो पहले थी, ये खैर ऐसा तो नहीं होता, वही तो नहीं आ सकती, लेकिन गवर्नमेंट फिर आपकी मजबूत नहीं बनती, गवर्नमेंट आपकी उसी तरह रहती है जिस तरह पहले चल रहा है पिछले कितने सालों से। तो स्वीडन में ये आखिरी जो गवर्नमेंट आई है जो रही है, इसमें तो जो अमीर लोग हैं वो अमीरतर हो गए हैं, और जो उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की गई है टैक्स में,
1: तो अब दुनिया में ट्रेंड चल रहा है अमीर होने का, तो हर आदमी अमीर होना चाहता है, सियासतदान भी अमीर होना चाहते थे, पहले सियासत करते थे अब अमीर होना चाहते हैं, चलें ये तो चलता रहता है। लेकिन जो हमारी अपनी कम्युनिटी है जिसको मैं गैर मुल्कियों की कम्युनिटी कहूँगा, क्योंकि अब स्वीडिश हैं गैर मुल्की तो नहीं है, उन्होंने नेशनैलिटी ले ली है, और जिन्होंने नहीं ली वोट का हक था, तो ये हमारे लोगों को क्यों नहीं समझ आती इस वोट की अहमियत क्या है, फिर वही पाकिस्तानी तर्ज की सियासत शुरू हो जाती है।
0: देखें जी राजा साहब, पहली तो बात यह है कि जब आपने यहाँ पर सियासत करनी है, यहाँ पर आपने इलेक्शन लड़ना है, सीधी सी बात सिंपल सी बात करूंगा, सारी लोगों को सिंपल समझ आ जाएगी, घुमा फिरा के करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, कहता रहूंगा कि आपने यहाँ की सियासत के मुताबिक चलना है जो उनका सिस्टम है, आपने यहाँ पर अपनी देसी सियासत नहीं करनी, आपने लोगों को अपना मंशूर बताना अपनी पार्टी का, जो आपका मंशूर है उसको सच सच बताना है, आपने कोई देसी सियासत नहीं करनी, झूठ बोलेंगे तो झूठ यहाँ पर ज्यादा देर नहीं छुपा जा सकता, जो निचले लेवल से कोई अपनी सियासत शुरू कर रहा है यहाँ पर, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी है, जो पार्टी के अंदर एंटर हुआ है, जो इसको जिसको टिकट मिली है, कोई भी है जी, यहाँ पर मैं आगे जाके बात करूंगा वो इस बारे में भी आप सवाल करेंगे, तो वो आपने जो अपनी सियासत शुरू की है, अपने आपको टिकट दी है पार्टी ने, चाहे काउंसिल की है, चाहे आपको क्या कहते हैं पार्लियामेंट की कोई दिया टिकट, तो वो आपने उसको सच बयानी से काम करना है, पाकिस्तानी सियासत की तरह नहीं चलना, आपने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ झूठ ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है, आप पकड़ जाते हो। तो और दूसरे जो यहाँ पर लोग हैं जो किसी को भी वोट देते हैं, जो तो वो भी जनाब पाकिस्तान की सियासत को मजे देने जरा कहने दे, गो के यहाँ पर स्वीडन में बहुत से लोग नहीं आए हैं, कोई किसी को 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल से ये लोग, कोई स्टूडेंट है, कोई

0: पुर्तगाल से आया है, कोई यूनान से आया है, ज्यादातर पुर्तगाल से आए हैं, वीजे खुले हैं, स्टूडेंट आए हैं, तो वो उनको सियासत का नहीं पता है यहाँ की, तो यहाँ की सियासत को उसी तरह लेते हैं जिस तरह पाकिस्तान में आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया होता है। तो ऐसे नहीं होता, आपने यहाँ पर पहले इसका मतलब करना है, सियासत को समझना है कि किस तरह की सियासत है, क्या है, तो उसके मुताबिक आपने किसी के इंडिविजुअली किसी की जात के ऊपर पर्सनली आपने किसी को वोट देना, वो आप करेंगे तो फिर आपका वोट जाया हो जाएगा, क्योंकि आपने देखना है कि ये किस पार्टी को आप वोट दे रहे हैं, उस पार्टी का मंशूर क्या है, वो पार्टी पहले आपके जो इस स्टूडेंट में इकतदार में उसने आपके लिए क्या किया है, उसको जाके पीछे देखें। एक वाहिद इंडिविजुअली बंदे को देख के या किसी को भी देख के आप वोट ना दें, पार्टी को देखें, पार्टी ने पहले क्या किया है यहाँ पर, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो और जो जो इलेक्शन कैंपेन में जो जो वो चल रही होती है, जो पिछले 3 माह से चल रही थी, जिसमें बहुत सी पार्टियां अपना मुद्दा बयान कर रही होती हैं, उसको उस हर एक चीज को जो उनकी कैंपेन होती है उसको देखें, उसमें पार्टियां क्या कह रही हैं और वो आपके आपके खिलाफ क्या जो है ना बकवासियत कर रही हैं, खासकर फॉरनर्स के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, उसको देखें। और माजी में जो है ये सोशल डेमोक्रेट ने कोई कुछ ज्यादा अच्छा करदार अदा नहीं किया, मैं सोशल डेमोक्रेट फॉरनर के हक में जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, मैं इसको इस तरह लूंगा यहाँ पर वो कहते हैं स्वीडन में, तो सोशल डेमोक्रेट या हमारे यहाँ वो मेरे तो मालूम में इनकी क्या कहते हैं हुकूमत रही है मालूम है जो है इनकी, तो अभी भी है इनकी, तो उसमें कोई ज्यादा जो वादे किए उन्होंने उन्होंने कोई वो चीजें जो है वो उसको पूरा नहीं किया, उसके उस तवक्को पे पूरा नहीं उतरे, तो वो उसको देखें आप पहले।
1: तो इसमें कोई
0: तो
1: हमारा अपना कसूर भी है या कि पार्टियों का कसूर है?
0: देखिए जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि हमारे जो जो फॉरनर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है देखें, सोमालिया का एक पार्लियामेंट के अंदर आ गया है जिसको स्वीडिश नहीं आती, और वो लोगों ने इसको वोट दिया है क्योंकि वो हक की बात कर रहा था, उनको पता था कि ये हमारे लिए जाके वो कहते हैं वो लड़ेगा, और वो सच और हक की बात कर रहा था। अब देखें और बहुत से फॉरनर्स आए हैं उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर आए हैं, कौंसिल तो बहुत ज्यादा बने हैं, फॉरनर्स की बात कर रहा हूँ जिसमें तुर्की है, कुर्दी है, बाल्कन कंट्रीज के लोग हैं, वो तो छोड़ दें, कौंसिल तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं होना, लेकिन पार्लियामेंट के आना बहुत बड़ी बात है, उसके अंदर बहुत ज्यादा लोग आए हैं स्टॉकहोल्म के अंदर जो पार्लियामेंट है, और वो उसमें मैं आपको बता दूं कोई पक्ष नहीं आया, ये भी बता दूं आपको।
1: वजह वजह क्या
0: और
1: है?
0: वजह यह है कि इत्तेफाक नहीं है, एका नहीं है, झूठ है, अपनी पक्षनी सियासत भी में इन्वॉल्व करते हैं, दानिशता ना करते हुए भी कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ की तीसरी जनरेशन वॉच कर रही होती है, अब तीसरी जनरेशन है, ये मैंने भी बताया था कि स्वीडन में बहुत से लोग पाकिस्तान से आए हैं, स्टूडेंट हैं, वीजे लगा के, भी उनके वीजे नहीं है अभी, वो किसी पेंट नहीं चढ़े, तो वो वही वो वॉच ही नहीं करते, वो सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए वो ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं, यार ये जो बंदा है ये जीत के कौंसिल तो मेरा वीजा लगा देगा या मेरे वीजे के लिए कोई करेगा, ऐसे नहीं होता, कौन सा वीजा लगाएगा आपका, कैसी यार वैसे बेवकूफी है ये, कि कहाँ पर आपकी तलीम
1: तो
0: आपने हासिल
1: शायद
0: की
1: ये
0: है।
1: क्यों नहीं बात समझ आती, ये एक बड़ी फेलस बात हो गई है कि पाकिस्तानियों का आपस में इत्तेफाक नहीं है, ये कोई बात तो अच्छी तो नहीं है, ये तो बहुत नेगेटिव बात है।
0: देखें ये इसको जड़ से पकड़े ना, आपका जड़ क्या है, आपका मुल्क क्या है, वहां पर कोई चीज चल रही है फेलस, ये सच है ना, सच बात करनी चाहिए, जब सच्ची बात नहीं करेंगे, जड़ से चीज को नहीं पकड़ेंगे तो हम उसको ऊपर से शुरू करेंगे, तो देखें ना ये आपको नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो आप ये अपना राजा साहब 50 लाख बंदा आपका बरौने मुल्क आ चुका है, स्वीडन के वीजे खुले हुए हैं, धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं स्वीडन स्टूडेंट छोड़ के पाकिस्तान को, और वो उनमें से बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, ये बात ये कलमैया है, ये सोचने की बात है, लेकिन सोचता कोई नहीं, इसके ऊपर बातें करते हैं, आए हैं कि नहीं, आ नहीं रहे, आपको ज्यादा पता होना चाहिए, मुझे तो आपसे ज्यादा पता है, स्वीडन में रहता हूँ, दूसरे ममालिक जो है जहां पर वीजे खुले हैं, जो पोलैंड तक लोग आ रहे हैं छोड़ के, अपना मुल्क, क्या वजह है? मजबूरी, गरीबी, काम नहीं, ये सारी, ऐसे तो कोई किसी का छोड़ने का दिल ही नहीं चाहता। तो वो है जड़ है, आपका मुल्क है, मेरा मुल्क है, वहां पर कोई पुरसाने हाल नहीं। हाँ, अभी जो बात की है, जो मीर है मीर हो गया, खरब जो खरब पति जो अरबपति था वो खरब पति है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये पैसा कहाँ से आया है, कोई पूछने वाला है? इधर तो पूछता है ना कि शायद तेरे को पैसा कितों आया है, लो जी हिसाब दो, हिसाब दूंगा, जो क्लियर हो गया। डरते हैं लोग यहाँ पे, एक बार सोचते हैं यहाँ पर लोग करते हैं जो वो कहते हैं सिस्टम में आ गया, वो पकड़ता भी है जो फ्रॉड करते हैं, जो जो अमीर लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर टैक्स दिया वो रहते हैं, टैक्स दे के अपना सारा कुछ उन्होंने अपना क्लियर किया हुआ है, चाहे वो सियासत में आया हुआ है, चाहे मैं भी बात करूं जो चाहे सियासत में है वो भी क्लियर होके आया हुआ है, और पहले क्लियर होके आया और बाद में कैसे अमीर हुआ है वो भी क्लियर हो गया। ये सिस्टम तो यहाँ चल रहा है ना, उसके पता चलो, वो तो एक दूसरी बहस है
1: तो
0: कि
1: गैर
0: यहाँ
1: मुल्कियों का कोई भी सिस्टम जो है वो सियासी लिहाज से या अपनी कम्युनिटी के लिहाज से वो सही नहीं चल रहा, इस पर ज़ाती इख्तलाफात आपकी बातों से पता चलता है। लेकिन ये एक टैक्सी ब्रांच में गैर मुल्कियों की इजारादारी थी और ये दोबारा जो है वो कोई और कंपनियां आ गई हैं, वो उनकी इजारादारी बन रही है, इसका मतलब है कि यहाँ भी नाइतफाकी है।
0: इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप टैक्सी की बात कर रहे हैं, गैर मुल्की जो कंपनी उधर आई है कोई, और वो उसने अपनी इजारादारी कायम की है, जारी बात है, हर एक को हक है यहाँ पर, आपका सिस्टम उन सब ने हर एक को बिजनेस के मौके दिए हैं, कोई भी आ सकता है। गैर मुल्की हम थे, मेरे वालद थे, टैक्सियां थी, करते थे, बूढ़े हो गए हैं, पेंशनिस्ट हो गए हैं, बहुत से अंकल बहुत से बुजुर्ग कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये तो भी देखना चाहिए यार साहब, इसमें हमारा अपना कसूर है। हमने आज तक गैर मुल्कियों ने, मैं हर खाली पाकिस्तानी का नाम नहीं लूंगा, इसमें सारे गैर मुल्की हैं, कोई इसको ये उधर ना ले जाए नेगेटिविटी में, सारे गैर मुल्की हैं, जबकि गैर मुल्कियों की एक बहुत बड़ी वहां पर 90% से ऊपर जो थी वो टैक्सी वो कंपनियां थी जिसके वो मालिक थे। और क्या आपने आज तक कोई अपना संस्थान बनाया? नहीं, बना ही नहीं सके। हाँ, माजी में 30, 35, 40 साल पहले बनाए थे, उसमें अब लड़ पड़े थे, होस्टल सेक्सी नाम था, लेकिन बहुत पुरानी बात है, वो 90 की बात है, तब भी आप आपस में लड़ पड़े, अभी नातपाकी की बात हो रही है, वो होस्टल फिर आपसे वो डैनिश ले गए छीन के, वो पहला गैर मुल्की थे जिन्होंने वो खोले था होस्टल सेक्सी, उसके बाद आप कोई कुछ नहीं खोल सके, आपका संस्थान ही नहीं था अपना, जब तक आपका संस्थान ना होता इतफाकी के साथ तो आप आगे नहीं जा सकते, फिर उसके बाद आपने कोई स्टैक यूनियन नहीं बनाई, यानी कि एक मजबूत एक ताकतवर जिसकी बुनियाद आप रखते आज से 10 साल पहले रखते थे। चेक्स ने उन खत्म हुई थी 2018 में, और उसका कंट्रोल होल्ड था, वो चेक और बैलेंस रखता था, और वही वॉनमैन का बेवलिंग देता था, चलो वो खत्म हो गई, खत्म कर दी गई या जो भी हुआ, उसके बाद आपने फिर आपको 10 साल मिले, आज 2027 आ गया, 9 साल आपको मिल गए, 9 सालों में आपने कोई स्टैक फिनिंग नहीं बनाई, अपने अपने उल्लू सीधा करने के लिए अपनी गाड़ी लेके काम पर निकल जाते, मेरे पास टाइम नहीं है मैं अपनी दिहाड़ी लावा, क्योंकि इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, आपको स्टैक फाइनिंग बनानी पड़नी थी। और ये पता क्या कहते हैं, जब ये बात करते थे ना कोई कोई मेरे जैसे बात करते, ओ यार इंजीनियर होता बड़ा मुश्किल है, हर चीज को हमारी कौम ने स्टार्ट ही मुश्किल रखा हुआ है, आप ये काम कह रहे हैं ना करना, कोई भी काम सियासत, ओ यार ये बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, ना ही रखी हुई है यार, अल्लाह शुरू करो, अल्लाह ताला ने मदद करनी है ना, उसका नाम लो, कहते बिस्मिल्लाह करो नेक नीति के साथ, वो आपकी अल्लाह मदद करेगा, लेकिन ना इसकी बुनियाद ही ना सही है, इन बातों ने रखी हुई है, ओ नहीं यार ये नहीं हो सकता, हर चीज में वो नहीं यार ये नहीं हो सकता, तो देखो आप यहाँ पहुंच गए, तो ब्लेम हम किसको दें? गैर मुल्की जो आई है यहाँ कंपनी उसको ब्लेम दें? वो
1: चले
0: तो
1: गैर
0: आना था
1: मुल्की
0: जहर।
1: आ गई है, कंपनी आ गई, कानून से आएगी, आपस मार्केट में जो है वो लोगों को रोज़गार मिल रहा है, आपकी ब्रांच में जो टैक्सी ब्रांच है तनख्वाह अच्छी मिल रही है, बेनिफिट अच्छे मिल रहे हैं, तो लोग तो जाएंगे।
0: लोग तो जाएंगे, यानी कि वो कौन सी गैर कानूनी आई है, अभी आपने बात की है, यहाँ के कानून के पूरे जो कानून के प्रोटोकॉल थे पूरे करके आई है, गैर कानूनी तो वो कोई नहीं आई, उसके ऊपर हमने वैन डालने हैं, रोना पीटना है, आप ये जब चीज हो जाती है तो उसके ऊपर आप क्या कहते हैं, हम लोग डोना शुरू कर देते हैं। मैं आपको फिर कहूंगा कि आपने कोई मजबूत कोई यूनियन बनाई होती है ताकतवर, सारे वॉनमनों ने मिलके, बहुत पुरानी, अब तो बहुत लेट है, अब तो नहीं बन सकती, बनाई होती तो आज ये नौबत ना आती शायद, आप केस भी कर सकते थे, आप बड़ा कुछ, आप कानून के मुताबिक हर चीज चल सकते थे, और ये चीजें आप कर सकते थे, लेकिन आप करना नहीं चाहते थे, आपके अंदर ही इतफाकी का ना ना इतफाकी का क्या कहते हैं फुकदान था, एक दूसरे के आप लोग कहते हलाफ थे, आप गैर मुल्की। और फिर आप देखें कि आपका आप सारे आहिस्ता आहिस्ता जो आ गए, अब इसके ऊपर भी कर रहे हैं, ये ज्यादा देर नहीं रहेगी, ये निकल जाएगी, गल्ला करो सुनो ना दिया, ये यानी कि बैठ के खुद ही बातें, खुद ही मफरूजे। जो कौम मफरूजों में चलती है उसका यही हाल होता है, फैंटेसी मफरूजे शॉर्टकट, ये तो तीन चार चीजें हैं इसमें चलना। तो देखो हालत क्या है इनकी, मैं ऐसे कौन बात करूंगा ना, क्या हालत है हमारी पाकिस्तान में, कर्जों में डूबे हुए हैं, 200 बिलियन का कर्जा है हमारे ऊपर, शर्म से मर जाना चाहिए हमें। झूठ सारा दिन, झूठ टीवी में बताया जाता है, सारा दिन झूठ बताया जाता है मीडिया पर, झूठ के ऊपर ये हम खड़े हैं, कितनी देर तक खड़े हो जाएंगे।
1: लेकिन शायद सवाल ये पैदा होता है कि जितनी भी सियासत की तरफ आप बात कर रहे हैं कि जब वोटर सपोर्टर ही खुद करप्ट है तो फिर लीडर को क्यों गिला किया जाए, वोटर सपोर्टर को नहीं पता कि मैं वोट किसको दे रहा हूं।
0: ये बात राजा साहब आपका सवाल बड़ा जबरदस्त कर दिया आपने, ये मैं चाह रहा था आप करें मेरे जेन से। देखें वोटर और सपोर्टर, देखें वोटर बदबख्त सॉरी को नहीं पता कि मैं क्या बदबख्ती कर रहा हूं, यानी कि मैं किधर वोट दे रहा हूँ, मैं सिर्फ मैं सोच रहा हूँ, यानी कि यार जेन भी दिमाग भी होता है ना, कोई दिमाग भी बनाया हुआ अल्लाह ताला ने, हर एक का दिमाग, हर अल्लाह ताला ने हर एक का दिमाग बनाया हुआ है, ये भी तो कौमें सोचती है ना, ये बैठी हुई है यहाँ भी, तो देखो यहाँ भी बड़ी चीजें होती होंगी, नेगेटिविटी होती है, बड़ा कुछ होता है, लेकिन ये अपने अपने मुल्क और अपनी नेशन के लिए ठीक है, ये सिर्फ करते हैं हमारे खिलाफ, फॉरनर के खिलाफ जो अपने जो इनका प्रोपेगेंडा होता है, और वो भी कहीं कहीं जगह वो जायज करते हैं, हमने भी यहाँ आके कौन से कोई तीर मार ली है, क्या कर ली है, चलो ये तो एक दूसरी बहस है। अब मैं वोटर सपोर्टर की बात करूं अपने, यार इनको देखो दिमाग अल्लाह ताला ने दी हुई है, किधर लगे लग जाते हो तुम, कोई यार यहाँ की कोई सियासत पहले पढ़ लो, यहाँ का कोई मतलब पता ही कख नहीं कि यहाँ पर ए से लेके जेड तक क्या है, सियासत क्या होती है, यहाँ पर पार्टियां कैसे चलती हैं, काउंसिल कैसे चलता है, आपकी पार्टियों के मेंबर कैसे होते हैं, रेड ब्लॉक क्या है, ब्लू ब्लॉक क्या है, ये ही नहीं पता, ते वोट पान चले है किन्नू राजा साहब नु की है राजा उमनु एक ने क्या ही राजा ने वोट पाया, वो यार गल करने वाली, शर्म से मर जाना चाहिए, तुम इधर आके भी तुम्हारी वही है सियासत जो पाकिस्तान में तुम करके आए हो, ना पता है ना अगे का पता है, ना अगे का पता है, ना ना तुम पिछे का पता है, ना अगा दौड़ तो पिछा चौड़, ये तुहाडा हिसाब है, जिथो आए उथे भी तुसी एंजी सो, इत्थे भी आके तुसी एंजी हो, यार कोई कोई कोई यार काम का काम, कोई कोई चज का काम कर लो, जिन्ना कोई सानू कोई कोई हो जाए फखर। अब ये बातें मैं कर रहा हूं ना, इसमें इसमें इसमें उड़ाएंगे मजाक खड़े होके बाहर ओ पागल ही होए, इस कोई भी करे आप करें, कोई भी कोई आपको दे रहा मत दे रहा, कोई चंगी कोई दे रहा मशवरा, कोई यहाँ पर रह रहा है, कोई 60 साल से आए हुए हैं जो उन्होंने सीखा है यहाँ आके, बहुत से लोग यहाँ 60 साल से भी रह रहे हैं ना, 70 साल से भी रह रहे हैं यूरोप में, 80 साल से भी रह रहे हैं, उन्होंने वो भी सीखा है, जब वो उनसे पूछते हैं, वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं है इनको इनको कहते हैं बताने के लिए अपना कीमती कोई सिर खपाने का, चलो आपका फोन आ गया, इनको मत भी दे देता बाद में, पहले सुनेंगे, ये चेजे लेने वाली कौम है राजा साहब, चीजें लेती है, चीजें लेगी हर एक से।
1: देखें यहाँ के कानून है, यहाँ के सिस्टम है, लोगों को वजारतें दी, दुनिया में लोग जो है वजीर आजम बने, जमहूरी सिस्टम से बने, वोट दिए, अपना इतने बड़े न्यूयॉर्क के मेयर बने, बर्तानिया के मेयर बने, किसने जमहूरियत ने वोट देने से बने, हमारा वोट देने का तरीका हमारे लीडर की तरफ जाता है, हम डेमोस्ट्रेशन करते हैं, डेमोस्ट्रेशन करना ये जमहूरी हक है, इसमें कौन सी बुरी बात है, ये जमहूरी हक है करनी चाहिए, लेकिन कानून कायदे के अंदर करनी चाहिए, यहाँ भी कौमें करती हैं इत्तेजाज करती हैं, शायद कभी हम लोग अपने मफाद के लिए भी बाहर निकलते हैं,
0: हम लोग जब हमें कोई जाती मफाद हो ना, जाती जाती जिससे हमें कोई फायदा हो रहा हो, जिसे पता हो कि 100% मैं श्योर हूँ कि मुझे कोई 100% फायदा हो रहा है, जब मुझे श्योर हो गया गारंटी मिल गई है, फिर मैं दिखाने के लिए बाहर निकलूंगा, बाहर एक एहतजाज करूंगा दिखाने के लिए, आप मेरी इस बात को अभी नहीं समझेंगे, इसको इस बात को समझें जरा, मैं क्या कहने का मतलब है, ये मेरा मतलब है कहने का कि जब मुझे कोई जाती मफाद होगा ना, और मैं उस मुझे उस मफाद की गारंटी मिल जाएगी कि मेरा वो मफाद पूरा हो जाएगा, तो फिर मैं वो दिखाने के लिए बाहर निकलूंगा। वैसे बाहर नहीं निकलूंगा, वैसे मैं अपने मुल्क और कौम के लिए, अपने सिस्टम, जो इधर भी सिस्टम चलता ना, यहाँ भी सिस्टम बाज का ज्यादा कर जाता है तो लोग निकलते हैं। ये नहीं कि यहाँ तो जहाज नहीं होता, पेरिस में नहीं होता, लंदन में नहीं होता, फ्रांस में नहीं होता, क्या कहते हैं स्पेन, ये लोग नहीं करते। ये जो गोरे, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं एहतजाज करते। ये बड़े बड़े एहतजाज करते हैं, बड़े बड़े बड़े, जब इनको पता हो कि इनका सिस्टम, इनकी कोई चीज उनके बरअक्स जा रहा है, या यहाँ पर महंगाई अरूज पर पहुंच गई है, महंगाई अरूज पर पहुंच गई है, जॉब्स नहीं है, लोगों को जॉब नहीं हो रही मुहैया, क्योंकि यहाँ स्टेट का काम है, जॉब्स नहीं है तो फिर उसको कम से कम पैसे तो उसको मुहैया किए जाए ना, ताकि वो अपना रोज बसर कर सके। ये लेकिन
1: बात तो है ना ईमानदारी की, चाहे कोई भी
0: मैं इसमें ये बात पूरी कर लूं। अब ये तो हो गया ना इधर का, मेरे मुल्क पाकिस्तान, अगर वहां पर महंगाई है, वो तो है डेफिनेटली बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी तनहाई तो उतनी नहीं है, वो तो ना होने के बराबर है, और क्या कहते हैं रोजगार नहीं है, बहुत से लोग जो है रोजगार से दूर हैं, कई लाखों करोड़ों। यहाँ पर आप कानून के दायरे के अंदर रह के एहतजाज बनता है ना इस कौम का, इस बेशरम कौम का, नहीं निकलेगी ये। और ये आईनी है,
1: ये आईनी, बिजली महंगी है, आपका मेरा मसला एक है, गैस महंगी है मसला एक है, सीमेंट महंगा है, बजरी महंगी है, कोई भी चीज़ें महंगाई है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो सब की फेलस है। जब हम अपने फेलस मुतालबात के लिए नहीं निकलते, तो मैं किसी लीडर के लिए निकलता हूँ, मैं किसी एक शख्स पीर के लिए बाहर निकलता हूँ, मुझे अपने मफादात का क्यों नहीं पता, मेरी पेंशन कितनी है, दूसरे की पेंशन कितनी है। ये पेंशनें पार्लियामेंट में बढ़ाई जाती हैं, बिल पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं, सुबह असम्बली में पेश किए जाते हैं, कौमी असम्बली में पेश किए जाते हैं, कभी इलेक्शन में या यूरोप में मुझे 40 साल हो गए देखते हुए कि 25% लोग जो है वो आखिरी दिन फैसला करते हैं, जब लीडरान की डिबेट होती है, पार्टी के लीडरान की डिबेट होती है कि हमारा मंशूर किया, हमने क्या करना है, उस दिन 25% लोग फैसला करते हैं, उससे पहले उन्होंने सुन रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। हमारे मुल्कों में या जहाँ फैसला करने वाले लोग होते हैं, वो भी तो अवाम फैसला करती है, वो भी तो लीडर फैसला करते हैं। कभी आपकी याद में लीडरों ने आपस में बैठ कर डिबेट की है और हम आपस में लड़ रहे हैं? जी शायद
0: जी, आपने ये एक क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा किया है कि जब यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है 2 माह पहले या 3 माह पहले, ज्यादातर तो 2 माह पहले, 1-1.5 माह पहले शुरू हो जाती है, जहाँ पर लीडर, जो पार्टियों के लीडर होते हैं, हमने सामने उनकी डिबेट भी होती है, जैसे अमेरिका में होती है, जैसे यूरोप के दूसरे ममालिक में होती है, बहुत से मीडिया चैनल्स वो दिखाते हैं, बहुत से स्टेक होल्डर्स का एहतमाम करते हैं, तो उसमें 10 या 8-10 जो पार्टियों के मेंबर, बड़े बड़े लीडर हैं जो पार्टियों के, वो खड़े होके उनके लाइव डिबेट की जाती है, लोग बैठे हैं सुनते हैं। इस तरह की डिबेट का आप कह रहे हैं, इस तरह की डिबेट आपके मुल्क में नहीं हो सकती राजा साहब, मेरे मुल्क पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जिस मुल्क से मेरा तल्लुक है, कभी भी नहीं हो सकती, जो मर्जी आप कर लें, जो मर्जी आप कर लें। ये क्योंकि आपका सिस्टम के अंदर, आपका क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो ये नहीं करने देगा, ना वो होने देगा, आपके ब्यूरोक्रेट्स जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है वो नहीं होने देंगे। हाँ, ये चीज नामुमकिन नहीं है, मुमकिन हर चीज है, लेकिन इस वजह दूर दूर तक ये चीजें नजर नहीं आ रही। ये डिबेट होगी तो लोगों को,
1: आप देखे ना, ये जो अब अभी लीडर बैठे हुए थे, 1-2 दिन की बात है, डेमोंस्ट्रेशन की बात हो रही थी, ये सारे आपस में मिले हैं ना, पर गए स्पीकर के ऑफिस में गए हैं, तो ये सारे मामला अगर हल कर सकते हैं, ये खुद नहीं करना चाहते। जिस तरह आपने दलील दी, आपकी दलील ठीक है, लेकिन ये खुद बंदा ही कहते मेरी नीयत ही खराब होगी तो मैं दूसरे पे इल्जाम दूंगा।
0: आप स्वीडन के स्पीकर की बात कर रहे हैं?
1: स्वीडन के स्पीकर की भी बात करूं, पाकिस्तान के स्पीकर की भी बात कर।
0: हाँ जी, ठीक है, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि बनिया जिस जिस मुल्क में उसकी जो सियासी इस्तेकाम ठीक ना हो, और उस मुल्क में बुनियाद ही किसी चीज की गलत लग दी जाए। मैंने अभी शुरू में यही बात की थी कि आपके मुल्क से लोग निकल गए हैं काफी ज्यादा, 50-60 लाख, लेकिन ना बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है राजा साहब, और वो सियासी इस्तेकाम ही नहीं है आपके मुल्क में, वो डावाडोल है। और आज 2027 आ गया है, 4-5 साल होने लगे हैं गवर्नमेंट के बने बने हुए आए हुए, कोई एक काम बता दें, चले मैं इसमें बहस नहीं करता, आप वो बात कर रहे थे स्पीकर की, आप बात कर रहे थे सर, मैं यही कह रहा हूँ कि बुनियाद ही नहीं है जिस मुल्क में जो रखते हैं चले, बुनियाद रख देते हैं, इट पुट से शुरू करते हैं, वही ठीक नहीं है। ऊपर बिल्डिंग कैसे ठीक होगी, वो तो ऐसी ही रहेगी, वो तो ठीक नहीं ना रहेगी, जो मर्जी कर ले, बस आप उसको तक्का लगा रहे हैं, उसको जबरदस्ती उसको आपने रखा हुआ है ऊपर, उस बुनियाद के ऊपर जबरदस्ती खड़ा किया हुआ है आपने उसको, बस सहारा दिया हुआ है आपने, जो होते हैं शतीर गार्डर के साथ जो कहते हैं पंजाबी च, उनके साथ आपने उस बिल्डिंग को इश्तारा दिया, कितनी देर तक है यार, 10 साल, 5 साल, और वो भी बेवकूफ सारे बन, उसमें सारे बेवकूफ बन रहे हैं। हाँ, जिन जिन कुछ कुछ लोगों का, जिन कुछ खानदानों का या किसी कुछ स्टेक होल्डरों का लगा हुआ है, क्या कहते हैं वो, चेक लगा हुआ है, वो जनाब खरबों में खेल रहे हैं, और आपका खरबों डॉलरों में खेल रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: और
1: आप सही
0: आपकी
1: कह रहे हैं। शायद
0: हाँ
1: देखें पिछले दिनों जब चौधरी शुजात साहब का था, उन्होंने कहा कि जो बाहर जो पार्टियां हैं इनको कोई ओहदे नहीं देने चाहिए, ये डिवाइड होते हैं, आपस में लड़ते हैं। तो क्या ये जितनी सियासी तंजीमात हैं, जमात हैं, ये आपस में लड़ते हैं, इनको ओहदे दिए जाते हैं, तो यहाँ की सियासत में ये क्यों ओहदे लेते हैं? क्या आप समझते हैं कि इसी तरह का फैसला होना चाहिए?
0: एक तो राजा साहब, मैं ये ओहदों से बड़ा तंग हूँ, क्या मुझे मुझे कभी आपने देखा है, मैंने कभी आज कितनी देर हो गई है सियासत करते हुए, एनालाइज भी करता हूँ, तजिया भी देता हूँ, कभी देखा है मैंने कभी किसी ओहदे की तरफ गया हूँ? राजा साहब, ये जो ओहदा यार, ओहदे के पीछे ये लोग भागते हैं जैसे ऐसे कि जैसे पता नहीं ये कितने सालों से यो ना, और उसमें मैं देखता हूँ, मैंने उसमें मैं कहता हूँ ये भी था, यानी कि ओहदा मिल, वो यार ये सब ओहदा सब झूठ है, नोटिफिकेशन आता है वो भी जाली है, उसको लेके वो घर फ्रेम बना के सजा लेते हैं, ये सब बकवास है, सब झूठ है। आप
1: क्या
0: अपने
1: ये
0: कले
1: सांसे
0: आप,
1: कमतरी है?
0: ये सासे कमतरी नहीं है सिर्फ, ये दिखाना है, मैं दिखाना है पेंड नू अपने, देखो मैं क्या हूं, सासे कमतरी भी है इसमें, ठीक है,
1: शायद
0: देख
1: हमारे
0: लीजिए
1: पास
0: यो
1: 2 मिनट है आज टाइम, थोड़ा हाल बताएं।
0: हाल आपको हर बार बताते हैं, हाल यही है कि जिस दिन आपने झूठ बोलना, अवाम ने झूठ बोलना छोड़ दिया पूरी, और आपके सिस्टरों और आपके आपके सियासतदानों ने, पाकिस्तान के, मैं पाकिस्तान के लिए बात करूंगा, आपका मुल्क, मैं ये नहीं कहूंगा कि साथ ही, आपका मुल्क एक सीमत पर चल पड़ेगा, जिस दिन आपने झूठ बोलना कर दिया बंद, झूठ, लेकिन जिस दिन, और वही जिस दिन आपके सियासतदानों ने झूठ बोलना बंद कर दिया, सच बोलना शुरू कर दिया, उस दिन आपका मुल्क दूसरी सीमत में चलना शुरू हो जाएगा, यही हाल है इसका, बस ये इसकी शुरुआत
1: आखिरी
0: है।
1: बात, क्या बैन लगा देना चाहिए दुनिया में कोई सियासी पार्टी जो पाकिस्तानी नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को?
0: गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तो ऊपर खुद पहले बैन लगना चाहिए, वो खुद ही कह रहा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे
1: चले
0: बैन
1: वो
0: लगा
1: तो
0: सकती है किसी
1: आईनी
0: के
1: बात
0: ऊपर?
1: होगी ना इसकी, वो तो ये बात हो सकती है ना, ये तो कर सकते हैं ना।
0: वो तो नहीं, वो तो किसी के ऊपर बैन नहीं लगा सकते बेचारे, वो इतने जोगे ही नहीं है, बैन उनमें तो इतनी ताकत ही नहीं है ना एनर्जी है, वो तो खुद किसी, वो कहते हैं वो कानों के, वो जो होते हैं छोटे छोटे कान है उसके ऊपर खड़े हैं, वो नीचे से पीछे से हटा दिए खत्म, वो क्या बैन उन्होंने लगाना किसी के ऊपर? मैंने आपको शुरू में यही बताया था कि बुनियाद बुनियाद ही ठीक नहीं है, वो जब बुनियाद ही ठीक नहीं हो, जो चोर दरवाजे से खड़े हैं आगे, वो क्या आपके लिए करेंगे राजा साहब, आपके लिए काम करेंगे या मेरे लिए या पक्षन के लिए, वो तो नहीं कर
1: तो
0: सकते।
1: ओवरसीज तो देख रहे हैं, दुनिया की मॉडर्न तरीन जमहूरियत देख रहे हैं, ममालक की तरक्की देख रहे हैं, ये भी तो ठीक हो जाए ना।
0: देखिए जी, अब ओवरसीज जो है ना, इधर पूरे यूरोप में और अमेरिका में, कनाडा में, अमेरिका कनाडा में तो चौथी जनरेशन है, तीसरी जनरेशन इधर भी है, चौथी जनरेशन इधर भी शुरू होने वाली है यूरोप में, आपको रिजल्ट डेनमार्क में भी मिल गया था, आपको रिजल्ट यूरोप में भी, इधर भी मिल गया, स्वीडन में भी, पाकिस्तानियों की बात मैं कर रहा हूँ, तीसरी जनरेशन इधर भी शुरू होने वाली है, अभी तीसरी यहाँ शुरू नहीं हुई, इधर क्या कहते हैं स्वीडन में, डेनमार्क में तो ऑब्वियसली शुरू हो गई है ना, वहां तो उनकी उनकी शादियां भी हुई हैं, उन्होंने वोट डाले हैं ना, वही कर रहे हैं, वही समझ रहे हैं सारा कुछ, तो ये जब तीसरी जनरेशन खत्म होएगी, चौथी जब इधर ही भी आएगी, तीसरी और उधर चौथी शुरू हो जाएगी तीसरी, तो आपके हालात खुद ही ठीक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जो सियासी हैं उधर के, मैं मेरा ये दावा है। जब तक हम जो पीछे जो है पिछला दौर जो है अदवार जो है वो फिर उसको लोग भूल जाएंगे, वही आके आपकी जो है ना आपके वो सिस्टम के अंदर वो लोग जो वोट देंगे वो सिस्टम में लोग आएंगे। अभी इसके ऊपर टाइम है, एज आप कह सकते हैं 5 साल 10 साल मैक्सिमम 10 साल मिनिमम 5 साल जो अगला इलेक्शन होगा।
1: तो ये मैंने सोशल पहले भी मीडिया का वायरस कैसे ठीक होगा?
0: नहीं, सोशल मीडिया तो एक अवाम है ना, सोशल मीडिया तो जो वो दुनिया की अवाम है वो इसके अंदर होती है और अपने अपनी राय देती है, क्योंकि लोग मीडिया को डेनमार्क की मीडिया को भी नहीं इतना इतना लोग देखते हैं जितना डेनमार्क की सोशल मीडिया को देखते हैं। हर मुल्क का सोशल मीडिया है का काम कर रहा हो, क्योंकि सोशल मीडिया का मतलब है अवाम, अवाम लिख रही है, अवाम बता रही है, अवाम कह रही है, अवाम ये जो हर जो चीज जो मीडिया छुपाता है वो अवाम ले आती है उसके ऊपर, ये जो चीज हुई है।
1: चलें, शायद चलते चलते मैं आपसे पूछ लूँ, एजेंडे में शामिल तो नहीं था, तो आपका स्वीडन में फंड रेजिंग प्रोग्राम हुआ, कितने पैसे इकट्ठे हुए?
0: राजा साहब, जिस दिन फंड रेजिंग प्रोग्राम हुआ था उसके उसके अगले रोज ही जो हमारी टीम मेंबर था वो शदीद बीमार हो गया। जब उसको उनका डायग्नोज हुआ हॉस्पिटल में तो वो ट्यूमर की तशखीस हुई, तो वो 2 हफ्ते से अभी वो 1.5 हफ्ते से हॉस्पिटल में है, उनका ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि वो जब शुरू हो जाएगा उनका ट्रीटमेंट तो हम 1 या 1.5 हफ्ते तक या 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी जो है ना सारा जो मवाद है जो हर चीज है उसकी फिर हम बकायदा उसको अनाउंस करेंगे कि क्या है।
1: ये फिर आपने निजाम देख लिया?
0: किस चीज का निजाम?
1: चेक एंड बैलेंस का?
0: नहीं, वो तो ये शो का था ना कि आप बात कर रहे हैं, वो तो सारे
1: पैसे होल कर रहा हूं, फिर एक ही बंदे की पूछे घूम रही है ना हर चीज।
0: नहीं, वो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका तो वो तो हुआ, उसके पीछे हम लग गए सारे, लेकिन टीम ने जो पैसा था वो तो सारा हमारा 99% वो कैश नहीं था, वो तो ऑनलाइन था सारा, वो तो सारा चला गया उधर ही सारा 99% क्या कहते हैं वो ऑनलाइन था, बल्कि 99.9% ऑनलाइन था।
1: तो कितना
0: वो तो सारा चला गया राजेश, मैं इसको अभी भी नहीं बता सकता जब तक मैं इसका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना मैं मीडिया एडवाइजर हूँ उसका, उस टीम का ना मैं उस टीम का बिल वास्ता ये बल वास्ता मेरा वही उनका तल्लुक है, लेकिन चलो शोकत होना का हिस्सा हूँ एक, लेकिन टीम का वो इस तरह नहीं जो ये काम कर रहे हैं, कोई कोई मीडिया एडवाइजर है, कोई स्पोक्स पर्सन है, वो मैं नहीं हूँ, वही आपको बता सकते हैं।
1: चलिए, शायद अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जो अस्पताल में अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनके लिए भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, इंशाल्लाह फिर दोबारा रابطہ होगा
0: जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
1: सामान नाजरीन, ये थे शायद जो के बात कर रहे थे, हमारा किससे मुतफिक होना जरूरी नहीं है, अगर कोई बात करना चाहे अपनी राय देना चाहे उसके लिए हमारा टाइम हाजिर है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामाइन, आज ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं थिंक टैंक से, ये तौकीर हसन बुखारी साहब जिन्होंने वेंस्टा पार्टी ज्वाइन कर ली है, ये आज की ब्रेकिंग न्यूज है। जी शाह साहब, वेलकम।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके नाजरीन और लिस्टर सबको अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आपने सही बात की है कि मुझे कंफर्म हो गया सब कुछ और मैं परमानेंट मेंबर बन चुका हूं वेंस्टा का। जैसे कि आपको पता है कि मैं पहले भी काफी पुराना मेंबर था वेंस्टा का, 34-35 साल मैंने उसके अंदर काम किया और उसके बाद मैं छोड़ के रेडिकल में चला गया, फिर मैं दूसरी पार्टी को का मशीर भी रहा हूँ, तो अब मैं वापस जो है वो वेंस्टा में आ गया हूँ, क्योंकि इसकी काफी जरूरियात थी, यहाँ के जो सियासी माहौल है उसको सही करने के लिए हमें जरूरत यह थी कि हम ऐसी बड़ी पार्टियों में भी जाएं जिनके अंदर कुछ नरम कोशा जो है वो हम लोगों के लिए है, क्योंकि एक ही पार्टी में सब लोगों का चले जाना या ऐसी पार्टियों को समझना जो कि समझते हैं कि ये फॉरनर के हमायती हैं और उन्हीं में रह के काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब वो इलेक्ट हो जाता है कोई ना कोई इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद वो आपको भूल जाते हैं। तो राजा साहब, इसलिए मैंने ये पार्टी जो है ज्वाइन किया।
1: शाह साहब ये पार्टी
3: और
1: तो टूट फूट का शिकार है, आपने ज्वाइन किया, क्या इसको सीधा करने जा रहे हैं आप?
3: जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये पार्टी जो है, जिससे मैं काफी अरसे से बातचीत मेरी हो रही थी और अब मैं परमानेंट मेंबर उनका बन के हूँ, और मुझे उनके हेड ऑफिस ने भी कबूल कर लिया। यहाँ के लोकल जो एल्बर्सलोन ट्रस्ट का जो फोरमैन है उनसे भी बात, हर एक चीज, यानी कि मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। और अब जो असल में मसाइल ये है कि क्या हम लोग अपने जो हमारे यहाँ आने वाली नस्लें हैं और जो हमारे बच्चे यहाँ रह रहे हैं, क्या उनके मसाइल के ऊपर हम बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो
1: तो शाह
3: इसके
1: साहब
3: बाद मेरे
1: आपकी
3: पास
1: सारी
3: जो
1: शरायत उन्होंने मानी है?
3: जी, मेरी जो मैंने शरायत उनको लिखी थी उसके अंदर 80% शरायत उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हमारे मुल्क, हमारे डेनमार्क के आइन के मुताबिक है, और ये जो चीजें आपने लिखी हैं हम इसको मानते हैं। और उसका मेरे पास रिटर्न मौजूद है, और वो ये है कि हम लोग इस मुल्क के आइन की तंजीम करेंगे, इस मुल्क के आइन की हम एहतराम करेंगे, इस मुल्क के जो कानून है अगर किसी कानून पे एतराज है तो उसके ऊपर हम पार्टी भी के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं। और पार्टी का जो आप देखेंगे कि पार्टी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई है पिछले 2 माह के अंदर, और जितने पुराने लोग हैं वो दोबारा एक्टिव हो गए पार्टी में। हमारे जो थे अपना सॉन्ग गेल, जो के पार्टी के पार्लियामेंट के जो स्पीकर थे फोरमैन, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है, वो भी अब पार्टी में मुशतरक हो गए हैं। और काफी पुराने लोग जो हैं उन्होंने वो पार्टी में अब उन्होंने वापस आ गए। और ये कोशिश की जा रही है कि हम जो है पाकिस्तान ना सॉरी डेनमार्क के आइन के मुताबिक पार्टी को चलाएं। और पार्टी का जो मंशूर है उसके अंदर है कि सबसे बड़ी जो बात है फ्री विल, के सबके लिए आजादी होनी चाहिए। और आजादी किन के लिए है? जिनके जो रिलीजियस हैं उनके लिए भी आजादी है, जो इनका जो आम आदमी है उसको भी आजादी है। सिर्फ आजादी नहीं तो दहशतगरों को आजादी नहीं, क्योंकि दहशतगर किसी भी मुल्क के लिए भी जो है वो
1: एक्सेप्टेबल नहीं है।
3: एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। जी तो
1: शाह साहब आपका बहुत
3: राजा साहब,
1: शुक्रिया, आप आज ने ब्रेकिंग। जी शाह साहब आप कह लें, आखिरी फिक्र कह लें।
3: जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये पार्टी जो है इसके अंदर कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए थे कि जिसकी वजह से पार्टी जो है वो थोड़ी सी गलत रास्ते पे चली थी, लेकिन अब पार्टी का जो वापस आई है और ये पार्टी का मंशूर जो है, इंशाल्लाह ताला इस संडे को जो हम बात करेंगे तो उसके ऊपर मैं पार्टी का मंशूर जो है उनकी इजाजत से वादा करूंगा कि हम किस किस लाइन के ऊपर ये पार्टी को लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मेरी 8 को फलके थिंग में मेरी मीटिंग है पार्टी के साथ, तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद जो भी जवाब आएगा वो रिटर्न होगा, और रिटर्न के अलावा हम किसी पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि दो जुबानें रखने से आप अपने अवाम में भी गंदे हो जाते हैं और दानिश सियासतदानों के साथ भी आप गंदे हो जाते हैं। तो लिहाजा मैं वो बात करूंगा, मैं अपने बेनिफिशरी के लिए बात नहीं कर रहा। मैं ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं या हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो औरतें हैं, इनके हकूक के लिए हम बात कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला कैटेगरी 5 का जो मसला है, ये भी मैं बुध वाले दिन वहां पार्लियामेंट में अपने जो कोलीग्स हैं पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके सामने जरूर रखूंगा। जी राज
1: शाह साहब
3: साहब,
1: आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया, ब्रेकिंग न्यूज़ दी। आपकी नई पार्टी तो नहीं है, आपकी पुरानी पार्टी, आपको मुबारक हो। आप अपना काम करें, इस मुल्क में जो काम करता है, मेहनत करता है, पार्टियां उसी को जो है वो इकनाइज करती हैं। पार्टी में मेहनत करें, जगह अच्छी मिल जाती है। आपका बहुत शुक्रिया,
3: बहुत बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज जी।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: इस वक्त हमारे साथ सिटी काउंसिल के कोपेनहेगन पार्लियामेंट के जो है, जो होती है ये पार्लियामेंट ही होती है, छोटी सी पार्लियामेंट होती है कम्यून की जो होती है, ये कोपेनहेगन की होती है, शायद इसको स्टेटस मिला हुआ है। ये नौजवान है, ये हमारे पार्लियामेंटेरियन है जो कोपेनहेगन कम्यून के पार्लियामेंटेरियन है, तो जिसे सिटी काउंसलर कहते हैं। अशम, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी अंकल, बहुत शुक्रिया सबको, मेरी तरफ से बहुत बड़ा सलाम।
1: अशम, हम जरा तारुफ कराते हैं, तो छोटे हैं तो बड़े छोटे में बात करते वक्त थोड़ी सी जो है ना वो रवानगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो क्या खबरें हैं, बजट पास हो गया, टाउन हॉल में क्या शोर पड़ा हुआ है?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, बहुत शुक्रिया। जब से हमारा एंट्रेंस होया है सिटी काउंसिल में, आप यकीन करें लोग शौक में ही रहे हैं, क्योंकि हमने अपना पोजीशन एक काफ़ी स्ट्रांग हद तक हमने अपना रखा है। एंड पहले तो सिकंदर भाई ने काफ़ी जोर जोर से हमारे क्या मैं आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की, अब मैं आ गया हूँ तो फिर आप यकीन करें बहुत ज़्यादा क्या चर्चे हो रहे हैं सिटी काउंसिल में। एंड हम तो लगे हुए हैं काम पे सिंस डे वन। अभी तो हमारा बजट का सेकंड फेज क्या अभी मुकम्मल हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा होया है। लेकिन हमने मेक श्योर किया है कि जिन लॉ बिल से हम सख्त क्या मैं डिस्टेंस लेते हैं उनको हमने हाईलाइट किया और कहा कि ये सही नहीं है और इसको हमें चेंज लेके आना चाहिए। तो अंकल आप देखें, आप लोगों ने हमें वोट दिए हैं, आप लोगों के लिए अगर हम काम ना करें और हम अपने क्या हम जो प्रिंसिपल्स के खिलाफ अगर हम काम करें तो फायदा नहीं है। इवन दो के आप यकीन करें जब वोटिंग आई है पार्किंग के बारे में, मैं वहाँ अकेला ही था ऑलमोस्ट कई क्या हम लॉ बिल्स में जहाँ मैंने कहा कि नहीं, कोपेनहेगन में हमने मेक श्योर करना है कि पार्किंग के हालात बेहतर हो। और यो आप लोगों ने क्या मैं संडे एंड वीकेंड का पार्किंग का आपने हटाया है फ्री पार्किंग, इसको आपको री इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हमने क्या मैं वोट किया था फ्री पार्किंग के लिए वीकेंड्स में एंड कंसाव से उन्हें, बाकी की बाकी पार्टियों ने कहा कि ये हम री इन्फोर्स नहीं करेंगे, तो वो इस बार नहीं हुआ। लेकिन इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा भी कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश यही होगा कि हम ऐसे क्या हालात बनाएं जहाँ जो लोग कोपेनहेगन के हैं वो आसानी से गाड़ी भी चला सके, पार्क भी कर सके एंड उनके हालात थोड़ा सा हम इतना सख्त ना कराएं।
1: देखिए अशम, बजट तो पास हो जाएगा, तो उन्होंने रखे हुए हैं 77 मिलियन जो रखे हुए हैं पार्किंग के लिए या के खूबसूरती के लिए, सब्जाजात के लिए रखे हुए हैं, ये बजट क्या काम करेगा?
2: अंकल अभी बात यह है कि कोशिश तो उनकी है कि हर जगह वो क्या हम कवर करें, हमारी ऑब्वियसली कोई और फोकसेस है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो आपको वेव नज़र आ रहा है इस्लामोफोबिया का, सख्ती का, ये आपको लोकली भी क्या मैं नज़र आ रहा है कि इस पे यहाँ भी एक फैक्ट है। अब आप ये देखें, ऐसे तीन बिल्स थे जहां हमने एस एफ खान कहा कि हम सख्ती से यहां से क्या मैं इसके मुखालफ है। एक तो ये है कि जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो फेनिंग है उन्होंने कहा है कि क्या हम चाहते हैं कि स्विमिंग क्लासेस हो जहां वो खवातीनों का अपना अलहदा हो, मर्दों का अपना अलहदा हो। और इसमें बहुत ज़्यादा क्या हम कहानियाँ चर्चा हुई हैं खासकर जो रेसिस पॉलिटिशियंस है। लेकिन अब हमारे बजट में ये आ गया बात कि उन्होंने इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना है और उन्होंने मेक श्योर करना है कि जो ये जेंडर डिवाइडेड स्विमिंग है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि इनकी कोशिश ये है कि वो सब मिक्सड हो गए साथ साथ करें। क्योंकि इनके हिसाब से जब आप खवातीनों का अलग करते हो, मर्दों का अलग करते हो, तो ये एक इस्लाम मतलब इस्लाम आप डाल रहे हो डेनिश कम्युनिटी में। वैसे तो ऐसे है नहीं, ये एक कॉम्फर्ट की बात होती है, लेकिन इनकी कोशिश ये है कि मुसलमानों के लिए जितनी हम सख्ती कर सकें उतनी।

0: को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ये भी बजट का ही हिस्सा था कि हमने पैसे लगाने मसाजी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसमें हमने भी क्या हम इसके खिलाफ क्या हम वोट डाला है।
1: नहीं तो मस्जिद में एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे खेलते हैं, बच्चे जाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उनके मैच हो रहे हैं। मैं भी कल एक मैच में गया हुआ था, ये मस्जिद वाले बच्चे खेल रहे थे मुख्तलिफ जगहों पर, और ये ब्रॉन्डवी में था,
0: ये
1: ब्रॉन्डवी के जो फुटबॉल ग्राउंड में मैच हुआ था।
0: और अंकल होने चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों को एक्टिव कराते हैं और आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं क्या मैं कि वो भी मसाजिद की जो सोसाइटी जो बनी है कि उसका एक हिस्सा लें। एंड ऑब्वियसली जब आप ऐसे एक्टिविटी करते हैं तो कम्यून आपको ऑफर करता है कि हम आपको पैसे देना चाह रहे हैं तो आप और से और ऐसे एक्टिविटी
1: राइट,
0: कराएं। लेकिन
1: तो
0: अब
1: अशम,
0: वो
1: आप लोगों को स्पेशली फ्री ग्रोने को क्यों तनकीद का निशाना बनाया जाता है? मीडिया इन पे लिखता है, और सिटी काउंसिल में भी आपकी डिबेट होती है, बहस होती है, और ठीक है ये जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन किसी को टारगेट तो नहीं करना चाहिए।
0: नहीं, मेरे हिसाब से मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि हमें इतना ज़्यादा टारगेट क्यों कर रहे हैं। हाँ ये है कि हम क्या मैं हमारे पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो बाकी पार्टियों के पे है अंकल। अगर हम मानते हैं कि ऑब्वियसली लोगों को अपने राइट्स मिलने चाहिए, और अगर आप क्या मैं अपना इस्लाम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली अलाउड होना चाहिए। बाकी पार्टियों में वो सेम किस्म की क्या मैं फ्रीडम नहीं है, तो इसलिए वो डर गए कि यार ऐसे एक पार्टी आ गए अगर ये पॉपुलर हो जाए तो फिर क्या से क्या हो सकता है।
1: सवाल ये पैदा होता है अशम के, ये इस्लाम इस्लाम की बात करते हैं, जिन ममालिक से ये लोग आए वहाँ इस्लाम की नाम की चीज़ नहीं है, तो डैनिशों का तो कानून ही इस्लामी मुल्क ही नहीं है, तो यहाँ इस्लाम की बात क्यों कानून नाफज की करते हैं?
0: अंकल बात ये नहीं कि इस्लाम को हो, हिंदुइज्म हो, या जो भी रिलीजन हो, बात ये कि आपको वो फ्रीडम मिलना चाहिए कि जिस भी मजहब की तरफ आप आना चाह रहे हैं कि आप अलाउड हो वो प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन बात अंकल एक तो ये मजहब की बात, दूसरी बात ये भी है, अभी पिछले दिनों एक आर्टिकल आया है कि क्या मैं फ्री कॉन ने डेनमार्क हिस्ट्री बनाया है, क्योंकि उन्होंने क्या मैं सिंगबिया के लोगों को एक्टिवेट कराया जाके पोलिंग स्टेशन में जाके अपने वोट डालने के लिए। हिस्टोरिकली सिंगबिया में 1/3 पॉपुलेशन मतलब 33% वोट डालते हैं, लेकिन पिछली कम्यून के इलेक्शन में ये क्या हम साबित आया कि वो 33% 46% पे आ गया था।
1: ये
0: और
1: अच्छी
0: ज्यादा
1: बात है।
0: ज्यादा बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि जितने लोग डेमोक्रेसी में अपना हिस्सा लेंगे उतना ही क्या हमें फायदा मिलेगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारे कम्युनिटी के लोगों को वो कभी कभार ये कहते हैं कि अच्छा वोट डाल के क्या फायदा होगा, कौन सा डिफरेंस आएगा, अच्छा वेदर आज अच्छा नहीं है तो मैं अगले इलेक्शन में अपना वोट डालूंगा। और यही मसला है, क्योंकि फिर आपको वो कैंडिडेट्स नहीं आएंगे जो आपको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करें,
1: लेकिन
0: तो
1: अशम,
0: ये ऐसे
1: लोग
0: इश्यूज
1: अखबारात
0: है।
1: की खबरें चलती रहती हैं, आपकी मेरे ख्याल इस जुमरात को फिर वोटिंग हो रही है, ये वाकई एजेंडे में बात है या नहीं है?
0: बिल्कुल अंकल वोटिंग हो रही है, लेकिन ये फिजूल से ऐसे अजीब अजीब किस्म की वोटिंग हो रही है और ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। अब आप ये भी देखिए कि एक पूरा केस चला है सिकंदर भाई के बारे में, उनका एड्रेस एंड जो भी है वो आप लोगों के सामने ही है कि क्या क्या हुआ है। अब जो राइट विंग पार्टीज उनमें से दो तीन लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये अपना अपने पैसे वापस दें। अब ऐसे तो नहीं होता ना कि अगर आपने एक साल से काम
1: कौन कौन
0: किया
1: सी
0: है।
1: पार्टियां ये डिमांड करती हैं?
0: ये मेरे ख्याल से अभी मुझे सीख याद नहीं है वो
1: क्या जिन्होंने फौसले
0: आपको
1: दिया उनको पार्टी स्टूट भी करती है? उनकी बैकग्राउंड पे खड़ी है उनकी पार्टी?
0: जी देखें अभी जो फिलहाल जो मुझे याद आ रहा है तेंस फॉल के बच्ची कंसर्वेटिव एंड सोशल डेमोक्रेट्स काफी स्प्लिट है, क्योंकि आधे से ज्यादा कह रहे कि आप बाज आ जाएं और दूसरा हाफ कह रहा है कि नहीं नहीं हमने इनसे पैसे निकालने। इवन दो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि राइटफुली अगर आपने काम किया है तो फिर आपको पैसे क्या मैं आपको मिलेंगे। और अंकल अगर वो मैं आपको जनरली बात बताता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल उनको क्या मैं लॉ को तोड़ के वो कहते हैं ठीक है सिकंदर ने कि हम पैसे वापस देने हैं, तो वो पैसे फिर किसको मिलेंगे? वो फिर मुझे मिलेंगे क्योंकि मैं फर्स्ट सुप्लियंट हूं, और अगर पैसे मुझे मिलेंगे तो मैं वो पैसे वापस सिकंदर को दे दूंगा। क्योंकि तो अंकल ये इन्होंने एक सर्कस ही बनाया है, इसमें कोई क्या सेंस नहीं है। और मेरा यही एक क्या अजीब सी सोच है कि अगर आप ऐसे पॉलिटिशियन कोपमेकन सिटी असेंबली में आपकी सीट है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। ये बच्चों वाले हरकतें इसमें

0: फायदा नहीं है, आप यहां आके पॉलिटिक्स करें और ये फिजूल से ड्रामे आप अपने पास ही छोड़ रहे हैं।
1: ये मेच्योर पुराने सियासतदान कहते हैं या नए नए आए हैं अपने कम्यून में?
0: अंकल लेक के पॉलिटिशियन है सोशल डेमोक्रेट्स के, वो उनका बैकग्राउंड है कुर्दिश, लास एसलन। आप देखें वो सिंस मुझे लगता है 2015 से पॉलिटिक्स में, इवन वो पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, सबसे ज्यादा जोर एंड शोर वही कर रहे हैं। अब अगर आप उनका फेसबुक क्या पेज देखें, पिछले जो जितने भी 45 उसकी पोस्ट रही हैं वो या तो क्या फई खान के बारे में रही हैं, मुसलमानों के बारे में रही हैं, या क्या रेसिज्म, मतलब उसका कोई और एजेंडा है ही नहीं इसके अलावा। तो
1: वो
0: हम
1: खुद भी
0: ऐसे ऐसे पॉलिटिक्स
1: मुसलमान
0: से
1: है।
0: फाइट करें, मुझे नहीं लगता कि वो मुसलमान है अंकल, क्योंकि जितना वो प्रोपगेंडा दार रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो मुझे
1: तो
0: तो
1: ये
0: नहीं
1: अगर
0: लगता।
1: उनको
0: लेकिन हाँ
1: कानून इजाजत देता है या जमहूरियत इजाजत देती है या टाउन हॉल इजाजत देता है तो ये फिर जमहूरी हक है हर किसी को इस्तेमाल करने का।
0: हाँ ऑब्वियसली लेकिन अंकल ये होता है बात कि क्या आप किस तरीके से अपना पोलिटिकल करियर क्या मैं चलाना चाह रहे हो। अब ये है कि ऐसे कोई पॉलिटिशियंस हैं जो झूठ पे क्या हम अपना करियर चला रहे हैं। एक के पॉलिटिशियन थे, उन्होंने क्या एक तस्वीर ली है किसी बंदे के घर पे के सामने, जहां उन्होंने कलमा लिखा था दरवाजे वो बैल्कनी पे, उन्होंने एक साइन लिखा था कलमे के साथ। अब इस पॉलिटिशियन ने इस तस्वीर ली है और कहा है कि ये आइसिस के सपोर्टर है, मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने ना सिर्फ ये क्लेम किया लेकिन उस फैमिली का एड्रेस भी लिखा है फेसबुक पे, जहां 10,000 12,000 लोगों ने लाइक भी किया ये पोस्ट। और फिर बाद में पता चला कि ये कोई आइसिस का कोई पोस्ट नहीं था, ये एक्चुअली उन्होंने अपना कलमा लिखा था। तो अंकल ऐसे ऐसे कि हम टूल्स यूज किए
1: तो
0: जा
1: आप
0: रहे हैं
1: लोगों ने
0: हमारे
1: अपना
0: खिलाफ
1: क्या, आप लोगों ने
0: प्रोपेगेंडा।
1: क्या फोसवा, आपने क्या इसकी जो है बंदोबस्त किया हुआ पार एज ए पार्टी?
0: अंकल हमारी तो कोशिश ये है कि हम हाईलाइट करें ऐसे इश्यूज की, ये कैसे हो सकता है आप ऐसा पॉलिटिशियन, आपका तो काम होना चाहिए कि सबको इकट्ठे रखने के लिए, स्प्रेड करने के लिए नहीं। और अंकल अब आप देखें हमारे खिलाफ इतने सारे क्लेम्स आए हैं, मेरे पे ये आ रहा है कि मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने कहा है कि अरेंज मैरिज एंड फोर्स मैरिज दो डिफरेंट चीजें हैं।
1: राइट
0: आपको तो पता है कि हमारे कल्चर में है कि लोग करते हैं और लोग प्रेफर भी करते हैं अक्सर, और मैं तो नहीं ये कहूंगा कि मैं डिक्टेट करना चाहूंगा कि आपकी लव मैरिज होनी चाहिए अरेंज मैरिज, लेकिन मैं ये कहूंगा अगर कोई बंदा प्रेफर करेगा कि उसकी फैमिली इन्वॉल्व हो और वो अरेंज मैरिज के प्रोसीजर को लेके चले, तो फिर गवर्नमेंट को बिल्कुल इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए।
1: क्या गवर्नमेंट का आइन पढ़ा जाता है वहाँ पे ये आइन में तो ये लिखा हुआ है, तो आप लोग क्यों तनकीद करते हैं या आप लोग सही जवाब नहीं देते?
0: लिखा तो है लेकिन लोग तो पता नहीं अंकल अपने अपने क्या हम बिहेवियर करते हैं।
1: चलें एक और खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं, आपके पुराने साथी तकीर हसन बुखारी शाह साहब, उन्होंने वेंस्ट्रा ज्वाइन कर ली है।
0: माशाल्लाह अच्छी बात है, मेरी यही क्या मैं लोगों को यही प्रमोट करता हूँ कि आप बेशक क्या मैं जो सी भी पार्टी में हिस्सा लें आप बस पार्टिसिपेट करें पॉलिटिकली। और अंकल तुकीशा का ये है कि उनका बहुत ज़्यादा हिस्ट्री रहा है विंस्टा के साथ, तो ऑब्वियस चॉइस होगी कि अगर वो फ्री कॉन छोड़ के वो फिर अपनी पुरानी पार्टी में जाएंगे, तो मैं तो खुश हूँ। इंशाल्लाह मैं ये होप करता हूँ कि वो विंस्टा में थोड़ा सा तब्दीली लेके आए।
1: तो क्या आपको भी लोग प्रेस कर रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं कि आप ही अपना मैंडेट लेके चले जाएं?
0: लोग कहते तो हैं और लोगों ने क्या मैं सजेस्ट भी किया है कि ये एक साल ही नहीं रुकेगा क्या मैं फ्री कॉन में इलेक्शन के बाद, तो ऐसे ऐसे बातें मैंने सुनी है। अब माशाल्लाह से 1 साल हो गया है मैं यही हूँ, और मैं आपको बताऊँ मैं इस पहले से भी ज़्यादा श्योर हूँ कि मैंने फ्री कॉन में ही रहना है, क्योंकि अंकल आपके सामने है अगर हम कुछ अपने प्रिंसिपल के साथ अगर हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर फायदा क्या है पॉलिटिक्स में आने के लिए। अगर मैं ये नहीं कह सकता कि पार्किंग के हालात आप थोड़ा सा बेहतर करा लें, या ये नहीं कह सकता कि जो हमारे बहनें हैं उनको क्या परमिशन मिलना चाहिए कि वो अपने सेपरेट स्विमिंग क्लासेस करें, तो फिर अंकल फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं फिर पॉलिटिक्स में क्यों आया हूँ।
1: डेफिनेट आपकी पार्टी का मंशूर है, अपनी पार्टी के मंशूर पे आप अमल कर रहे हैं, ये आपका लीगल राइट है।
0: बिल्कुल अंकल हमारे राइट्स हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को ये दिखाएं कि जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे जितना आपके हम साथ देंगे उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और अंकल आप सब लोगों के सामने हैं जिस तरीके से उन्होंने क्या मैं सिकंदर भाई को अटैक किया है, अब रिसेंट टाइम्स में मुझे भी अटैक कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल शो करने के लिए है कि अगर आप ऐसा मिनोरिटी आते हैं सियासत में तो फिर आपके लिए मुश्किलात डे वन से होते हैं। तो हमारी
1: तो ये
0: कोशिश ये है
1: देखिए
0: कि
1: ना,
0: हम
1: वैसे तो आप मिनतंग मिनते करते रहते हैं, आपको मीडिया जगह नहीं देता, इस तरह आपको रोज मीडिया में जगह मिल रही है।
0: अंकल सिंस 7 सितंबर मेरा नाम 220 आर्टिकल्स में मेंशन हुआ है, मतलब दिन के 30 आर्टिकल्स ऑलमोस्ट हो रहे हैं। तो ये इतना एक्सट्रीम इन्होंने किया है, लेकिन बार हमने क्या मैं हिम्मत नहीं छोड़ना, स्ट्रांग रहना है, और इंशाल्लाह ये हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम पूरी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं।
1: देखिए आप काम करेंगे, यहाँ तो काम करने की कोई पाबंदी नहीं है, तो आप अपना आज़ादी से बोल सकते हैं, आज़ादी से कह सकते हैं। आप कोपेनहेगन की पार्लियामेंट में के अंदर बैठे होते हैं, आपको पूरा हक है वहाँ बोलने का।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ये है कि अंकल हमने ना सिर्फ क्या हमने कहा कि इसमें बजट में नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमें पसंद आई हैं उनको हमने सपोर्ट भी किया है अंकल। ये 2027 में हम सॉरी 2027 में हमने बहुत हाईली इन्वेस्ट किया है डिमेंशिया एरिया में, जिन लोगों को डिमेंशिया की बीमारी है, तो हम ना सिर्फ उनको हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनको वो काम से थोड़ा सा छुट्टी ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो फैमिली मेंबर को डिमेंशिया है उनके साथ वो टाइम दें। हमने पार्किंग हमने फ्री तो नहीं करवाया, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग स्पॉट्स बनवा रहे हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम डाल रहे हैं क्या मैं एजुकेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा डाल रहे हैं। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि कोपेनहेगन आने वाले टाइम में ज़्यादा खूबसूरत होगा और ज़्यादा एक्सेसिबल होगा। अभी हम मेट्रो पे भी हम काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि ये जो सिटी रिंग है मेट्रो का कि एक मेट्रो स्टेशन सेल तक भी आ जाए, तो जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल हो। तो हम अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं अंकल, अभी मैं
1: लेकिन
0: नया
1: अभी
0: नया आया हूँ
1: तो
0: तो
1: अभी जो बूढ़ों के लिए, बीमारों के लिए जो टीका लगवाना है, जिसे जुकाम का टीका कहते हैं, जैसे कोरोना वायरस का टीका लगाते हैं, तो पहले तो अपने
0: जी
1: अपने डॉक्टर लगाते थे, अब मुख्तलिफ जगह बना दी हैं, डिस्टर्ब कर दिया हर चीज़ को।
0: जी अंकल। और इसका आपने अच्छा किया ये इश्यू रेज कर रहे हैं, ये मुझे मेरे हिसाब से ये कम्यून का क्या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रीजन का है, लेकिन वहाँ मुझे पता है कि जो हमारे भाई हैं इरफान गानी वो बहुत क्या मैं काम करे इस चीज़ में और वो काफ़ी वेल एजुकेटेड भी है। तो मैं श्योर हूँ कि इस इश्यू को मैं उनको मैं रेस करता हूँ उनके साथ, आप भी करें, और फिर हम इस पर हम इंशाल्लाह कोई बेहतरी लेके आएंगे।
1: तो आप क्या कहना चाहेंगे बजट के मुतल्लिक, ये बजट कब तक अनाउंस हो जाएगा, पास हो जाएगा?
0: अंकल मेरे हिसाब से ये पास हो गया है, जो लास्ट मीटिंग में हम थे
1: ठीक है,
0: हमारे थोड़े से चीज़ें थे जो हम निकालना चाह रहे थे, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो वोटिंग पावर
1: तो
0: नहीं
1: क्या
0: था।
1: बजट में आ गया दांतों का इलाज मुफ्त हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट फ्री हो जाएगी?
0: ट्रांसपोर्टेशन फ्री नहीं होगा, अभी तक हम वहाँ तक हम नहीं पहुँचे, लेकिन दांतों का हमने ये करवाया कि जो एल्डरली है मतलब जो बुढ़े हैं उनके लिए वो हम फ्री करवा रहे हैं, तो वहाँ आपको ऑब्वियसली अप्लाई करना पड़ेगा। वो जो स्पेसिफिक्स है वो मैं इंशाल्लाह आपको जात लेके आ जाऊँगा, लेकिन जी दांतों का इलाज जो लोग कम व्यू में रहते हैं उनके लिए फ्री होगा।
1: क्या कहा, एक बार दोबारा रिपीट करें, कहाँ रहते हैं?
0: जो कोपमेकिंग कम्यून के जो रहने वाले हैं,
1: राइट,
0: अगर आपका अब वो एज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जो अगर आप एल्डरली हो मतलब आप थोड़े से आपकी उम्र ज़्यादा हो, तो आपके लिए इंशाल्लाह 2027 में दांतों का इलाज फ्री होगा
1: चलें जी, ये भी
0: जी
1: नई गाड़ी आ जाएगी, चला कर देखते हैं कैसे चलती है।
0: इंशाल्लाह
1: तो आखिर में कुछ कहना चाहें अपने सामाइन को, नाज़रीन को?
0: जी। मैं बस ये कहूँगा कि शुक्रिया सबका सपोर्ट का, एंड इंशाल्लाह आप बस सपोर्ट करते रहें। अभी आप थोड़ा सा सब्र रखें मेरे साथ, क्योंकि टाइम्स थोड़े से टफ है जर्नलिस्ट के साथ और काम नया नया है, लेकिन इंशाल्लाह मैं 1-2 महीना आप मुझे दे दें, मैं कंफर्टेबल हो जाऊं काम में, तो फिर मैं पूरे के कम्युनिटी के जो सरबरा हैं उनको मैं इनवाइट करूंगा, और फिर हम वहां बैठेंगे बातचीत करेंगे, और फिर मेरी कोशिश ये होगी कि हम जितना रेगुलर बेसिस पे मैं आप लोगों के इश्यूज सुनूं उन पे मैं फिर काम करूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र रखें, इंशाल्लाह मैं सबसे मिलूंगा सबसे बातचीत करूंगा जी।
1: اشم آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے نوجوان سٹی کونسلر کوپن ہیگن کمیون سے اشم آغا, ان کی باتیں آپ نے سنی. یہ نوجوان ہیں, بات کرتے ہیں, ڈیفینیٹ اب یہ سیکھ بھی رہے ہیں, تجربہ بھی حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کر رہے ہیں. اپنے موقعوں پر ڈٹے ہوئے ہیں, کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جو ان کے آئین میں, پارٹی کے آئین میں لکھا ہو اس پر یہ کام کر رہے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ جسے کہتے ہیں فلیکسیبل ہونا چاہیے, مل جل کر کام کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی کافی.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے. جس طرح ہم نے صبح انٹرو میں بتایا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے, ان میں ایک ہمارے اسپیشل مہمان بھی ہیں جو کہ کبھی کبھار جو ہے اپنا ٹائم نکالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حضرہ پر روشنی ڈالتے ہیں. تھنک ٹینک بھی ہیں یہ بھی, جو برطانیہ سے وہاں کام بھی اپنا کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کے مسائل پر اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں, ویلاگ بھی کرتے ہیں, اور لکھتے بھی رہتے ہیں, اور کھل کر لکھتے ہیں, کھل کر بولتے ہیں. میری مراد ہے شاہ جنجوا صاحب. جنجوا صاحب ایک بار پھر آپ کو کوپن ہیگن کی فضاؤں میں خوش آمدید کہتے ہیں.
3: جی وعلیکم السلام رائے صاحب, بہت شکریہ, اور آپ کے جتنے مہمان ہیں ان کو بھی میری طرف سے محبت بھرا سلام.
1: وعلیکم السلام جنجوا صاحب. سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ درنے میں پاکستان گئے ہوئے ہیں.
3: میں اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ نے دل و دماغ کے ساتھ, تو واقعتا میں پارلیمنٹ کی راہداریوں میں بیٹھا تھا, لیکن جو میں نے بات میں نے دو دن پہلے کہی ہے بالکل عین وہی ہوئی ہے, اور وہ یہ تھی کہ مذاکرات جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہوں گے, اور ناکامی کی ذمہ داری جو ہے وہ پی ٹی آئی پر ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے جو لوگ مذاکرات کر رہے تھے انہیں کھنگالنا چاہیے کہ وہ ہیں کون. اگر آپ جو ہے وہ اپنا مقدمہ کسی ایسے بندے کو دیتے ہیں کہ جس کا اپنا جو ہے وہ کلیم ہو کہ یہ زمین اس کی ہے, تو وہ زمین آپ کو تو نہیں دے گا, وہ تو خود اپنے پاس رکھے گا, اور آپ کا مقدمہ وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ ہرا دے گا. تو پی ٹی آئی کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا ہے.
1: پی ٹی آئی کے ساتھ بالکل ایسا ہوا ہے, جبکہ قبلہ حضور کی دعائیں بھی ساتھ تھی.
3: یہ بڑی ایک جو ہے وہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر تبدیلی اور انقلاب کا جو فیصلہ ہے یہ خالی عمران خان کا نہیں تھا, یہ عمران خان اور ان کے کزن جو ہے وہ کینیڈا والے علامہ باہر القادری, ان کا تھا, دونوں کا تھا, اور دونوں نے مل کے جو ہے وہ پی ٹی وی کی عمارت پہ حملہ کیا. پھر میراج القرآن کے لوگ جو ہے وہ اس عمارت کے اندر گھس گئے, اور پھر طاہر القادری صاحب نے جو ہے وہ مبارک دی. یہ سارا کچھ آن دا ریکارڈ ہے, سارے اس ویڈیو کو قادری صاحب کی آواز کو سن چکے ہیں. لیکن اور قبریں بھی جو پارلیمنٹ کے سامنے کھودی تھی وہ بھی قادری صاحب نے کھودی تھی, عمران خان نے تو قبریں نہیں کھودی. وہ بےچارا تو دن کو آتا تھا دو تین گھنٹے کے لیے, وہاں پہ رقص و سرود کی محفل ہوتی, گانا ہوتا, عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی خوش گپیاں لگاتے اور چلے جاتے. لیکن اس تبدیلی کو اور اس انقلاب کو کربلا کے ساتھ جو جوڑنے والی شخصیت تھی وہ تو ان کے کزن تھے. انہوں نے جو ہے وہ ایسا رنگ بھرا کہ پوری پاکستانی عوام بلکہ پوری دنیا کو بتا دیا کہ یہ مارکہ کربلا ہے, اور اس مارکہ کربلا سے جو آج پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا وہ یزیدی ہے, اور جو یہاں پہ جم کے اپنا خون بہا دے گا وہ حسینی ہوگا. لیکن پھر وقت نے دیکھا کہ علامہ صاحب جو ہے وہ خود یزیدی قافلے میں شامل ہو گئے, اور وہ پیٹ پھیر کے جو ہے وہ ایسے بھاگے کہ آج 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا وہ پاکستان جانے کا نام ہی نہیں لیتے. اور عمران خان بیچارہ جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے, اور عمران خان ایسا جیل کی سلاخوں کے پیچھے گیا کہ اس نے جس کسی کو بھی اپنا نمائندہ مقرر کیا وہ پی ٹی آئی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ تو خان صاحب کا ایک وین ہے کہ انہوں نے محمود اچکزئی کو, جس کا وہ خود فن بناتے تھے, اسے جو ہے وہ سینٹ کے اندر اپنا نمائندہ بنا دیا, اور پارلیمنٹ کے اندر اپنا نمائندہ بنا دیا, پھر علامہ راجہ ناصر عباس جو ہے وہ انہیں اپنا نمائندہ بنا دیا, پھر جو ہے وہ ایک وکیل کو لے آئے اور وہ اس کو سینٹ کا ممبر منتخب کر دیا. تو یہ دو راجے اور ایک محمود اچکزئی, یہ ٹوٹل عمران خان کی طرف سے مذاکرات کرنے والے ہیں, اور ان تینوں کا مفاد اس بات میں ہے کہ عمران جب تک ہو بلکہ مرتے دم تک وہ جیل میں رہے, تاکہ یہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے اوپر قبضہ کر کے پی ٹی آئی کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے رہے, اور عہدے سارے ان کے پاس ہو, پریولیج ان کے پاس ہو. तो अगर इमरान खान खुद बाहर आता है तो वो तो एक लड़े में इनकी बैक पे जो है वो मुक्का मार के, मैं ठुड्डा तो नहीं मारता, मैं पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, कि वो इनकी पीठ पे मुक्का मार के इन्हें उठा के बाहर फेंक देगा, क्योंकि ये लोग तो पीटीआई से थी नहीं, और पीटीआई से जब ये है नहीं है तो ये पीटीआई के वफादार में क्यों मुजाकरात करेंगे। और इन्होंने जितने भी आज तक मुजाकरात किए उनका एंड गोल यही था कि इमरान खान को जेल में रखा जाए और यूं ही हम जो है वो नाम का धरना देंगे, चंद बंदे जो है वो आ जाएंगे, कुछ लोग जो है वो इधर उधर हुकूमत के ऊपर अंडे फेंकेंगे, हुकूमत के ऊपर पुलिस अहकानों को डंडे मारेंगे और जख्मी करेंगे, गोलियां चलाएंगे। लेकिन उनके जो पसे पर्दा जो मकासद है वो ये है कि पीटीआई का या इमरान खान का जो मफाद है वो इसमें है कि हुकूमत दहशत गर्दों के सामने सर नगुं हो, हुकूमत जो है वो दहशत गर्दों के सामने, इंतहा पसंदों के सामने, अफगानी जितने दहशत गर्द हैं, जितने जो है वो गैर कानूनी इतना गजीन है, उनके सामने घुटने टेक दे। और पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, पाकिस्तान ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये टोटल है कि पीटीआई की बका गैर कानूनी तारकीने वतन अफगानी दहशत गर्दों के साथ भाईचारे में है, और पाकिस्तान की बका उनको रगड़ा लगाने में और दहशत गर्दों का किला कमा करने में है। सोहेल अफरीदी की हुकूमत वहां पे इसलिए कायम है कि उसके जितने मुहाफिज हैं वो सारे के सारे इस तरह के लोग हैं, दहशत गर्द, अफगानी पनाहगजीन, कातल, मफरूर। और किसी भी वजीर आला का काम ये होता है कि वो अपने सूबे के अंदर जो तरक्याती काम होते हैं, अवामी मसाइल होते हैं, उसके ऊपर उसकी तवज्जो होती है। लेकिन सोहेल अफरीदी कहता है कि मेरा मैंडेट तो सिर्फ ये है कि मैं इमरान खान के लिए धरना दूं, तोड़ फोड़ करूं। तो ये तो वजीर आला का विजन है। अब अगर वो इससे हटता है और वो कहता है कि जी नहीं, मैं अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करूंगा, तो इमरान खान अगले ही किसी दिन किसी मुलाकाती को कहेगा कि सोहेल अफरीदी को खत्म करके किसी और को वजीर आला बना दे। तो पार्टी तो इस तरह चल रही है, यानी टोटल इस पार्टी का जो मफाद है या इस पार्टी की जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी, मार धाड़, लूट फूट और इस तरह की जो है वो सिचुएशन बना के रखना है कि पता चले कि गोया पाकिस्तान जो है वो एक नाकाम रियासत है। इमरान खान, आपको याद है कि जब वो वजीर आजम से तो वो कहते थे कि आज पाकिस्तान बैंकरप्ट हुआ कि कल हुआ, तो वो बार बार आए रोज जो है वो पूरी दुनिया को इसकी नवीद देते थे, लेकिन वो असल में किसी और को खुश कर रहे होते थे। और पीटीआई का आज भी जो मतमा नजर है वो पाकिस्तान नहीं है, हालांकि अगर इनके अंदर कुछ थोड़ा सारा भी सियासी शऊर होता तो ये पीपल्स पार्टी से सबक सीखते। पीपल्स पार्टी जिसकी क्यादत को फांसी हुई, लेकिन उन्होंने पीटीआई को सेपरेट रखा, उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, जो उनसे गलतियां हुई उन केसेस की पैरवी को सेपरेट रखा, तो आज उस पार्टी जो है वो फिर भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, और उसी पार्टी का जो नुमाइंदा है या चेयरमैन है वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है। लेकिन पीटीआई का तरीकाकार ये है कि अगर इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। होना तो ये चाहिए कि पीटीआई का कोई मंशूर होता जो है नहीं है, कोई दस्तूर होता जो है नहीं है, या पीटीआई का मतमय नजर ये होता कि हम पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लेके आएंगे, लेकिन वो बेहतरी लाना उनका मकसूद नहीं है। उनका मकसूद सिर्फ ये है कि दुनिया की किसी भी कीमत पे एक लखंडरे क्रिकेटर को जो है वो पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया जाना चाहिए, और उसके पास एक ही उसके पोर्टफोलियो में है, वो है जो है वो कैंसर हॉस्पिटल। याद रखें कि कैंसर हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तानियों के पैसों से बना, उसमें हर सियासी पार्टी, मजहबी पार्टी, हर एक बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उन सब ने पैसा दिया, तो वो हॉस्पिटल कायम हुआ। लेकिन उसका क्रेडिट एक जमात ले, एक शख्स ले, ये नाजायज है, ये हराम है, ये गैर कानूनी है और ये नहीं होना चाहिए। और फिर इसी इमरान खान के की पैरवी में जो है उसके कजन ने भी जो है वो अपने हर चैरिटीज का क्रेडिट खुद लिया, हालांकि इन्हें चैरिटी कहना ही नहीं चाहिए, ये अपनी अपनी पार्टी और फैमिली की प्रमोशन के लिए बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें जिसमें वो मजहब के नाम पे, जिसमें वो अवामी फलाह बहबूद के नाम के ऊपर जो है वो चंदा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट खुद अपने आप को देते हैं, और उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर ये जो है वो सियासी तगो दो करते हैं, ये बिल्कुल एक गैर कानूनी है, किसी मुहजब माशरे के अंदर इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।
1: जी जुआ साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त तजिया किया, लेकिन इमरान खान की पार्टी में जो उनका वर्कर है, जो उनसे मोहब्बत करता है, वो अपने वज़ीर आज़म से मोहब्बत करता है, अपने पार्टी लीडर से मोहब्बत करता है, तो क्या इमरान खान पर कल्ट्स ने कब्जा किया हुआ है या इमरान खान खुद एक कल्ट्स हैं?
3: इमरान खान या पीटीआई ये कोई पार्टी नहीं है, ये पार्टी नहीं है, इसे पार्टी नहीं कहना चाहिए। ये इमरान खान को इमरान खान का एक फैन क्लब है। इस फैन क्लब के अंदर जो लोग आते हैं उनकी मोहब्बत इमरान खान से होती है, पाकिस्तान से नहीं होती। जो सियासी पार्टियां किसी मुल्क के अंदर बनती हैं उन सियासी पार्टियों का एक मंशूर होता है और एक दस्तूर होता है, और वो मंशूर और दस्तूर मुल्की फलाह बहबूद के लिए होता है। उसमें ये नहीं होता कि हमने किसी फलाह बंदे को वज़ीर आज़म बनाना है या फलाह बंदे को हमने सदर बनाना है। वो मुल्की मफादात के लिए लोग इकट्ठे होते हैं और उसे सियासी पार्टी पार्टी कहा जाता है। लेकिन ये किसी एक शख्स को प्रमोट करके उसे फलां फलां या सारे ओहदे दिलाना, ये उसके फैन क्लब के लोगों का ऐसा होता है। और उस फैन क्लब के ऊपर भी अब एक और क्लब ने कब्जा कर लिया, वो है जो है वो सोशल मीडिया क्लब। अब इमरान खान का जो असल फैन क्लब था वो पीछे हो गया है। उस फैन क्लब के लोगों को तो कोई पूछता नहीं है, वो लोग तो कहते हैं कि भाई अगर इमरान खान से जुर्म हुआ है तो इमरान खान वो अपनी सजा काट के जेल से बाहर आ जाएगा, आप उसका मुकदमा लड़ो, अगर आपके पास उस मुकदमे के एंटी दलायल है तो वो जाके अदालतों के अंदर दो। लेकिन वो दलायल अदालतों के अंदर तो देते नहीं है, अदालत के अंदर बार बार इल्तवा मांगा जाता है और सारी तवज्जो ये होती है कि हमने किसी सूरत जो है वो इमरान खान को जेल में नहीं रहने देना। बेशक इमरान खान ने हजारों क्राइम किया, वो कहते भी है कि है, वो नहीं कहते कि इमरान ने क्राइम नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि इसके बावजूद इमरान खान साहब हमारे लिए महात्मा है। तो ये जो सोच है ये सोच अच्छी नहीं है, ये मुस्बत सोच नहीं है। किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर ऐसी सोच को पज़ीराई नहीं दी जा सकती। और अब सोने पे सुहागा ये है कि उसके ऊपर भी जो यूट्यूबर ने कब्जा कर लिया है, ये जो फेसबुक के लोगों ने सोशल मीडिया के लोगों ने कब्जा कर लिया है, और टिकटॉकर ने कब्जा कर लिया, और टिकटॉकर अपना प्रोग्राम बेचने के लिए अपनी व्यूवरशिप के लिए ऐसे ऐसे जो है वो शगुफे छोड़ते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं। रात को एक बंदे ने कहा कि इमरान खान सुबह फजर की नमाज के वक्त जो है वो अडियाला जेल से बाहर होंगे और उनकी गाड़ी जो है वो अपने घर की तरफ रवा दवा होगी, और फिर चंद दिनों के बाद जो है वो आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता और उनके इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा। तो जो बंदा भी इस तरह का ब्लंडर करता है, जो भी इस तरह की झूठी खबरें देता है, पीटीआई के या इमरान खान के जो फैन क्लब है वो सारे के सारे उसका प्रोग्राम देखना शुरू हो जाते हैं, उसे धड़ाधड़ लाइक मिलते हैं और वो अपना पैसा कमाता है, फिर उसे जो है वो इससे जो है वो मजीद हौसला अफजाई होती है और वो अगले दिन इससे बड़ा झूठ बोलता है। तो ये झूठ बोलना, तवातर के साथ झूठ बोलना और एक दूसरे से बढ़ के झूठ बोलना, ये जो इमरान खान का नया सोशल मीडिया फैन क्लब है, इसने जो है इसका ये समझे कि अपने अपनी एक जिम्मेदारी ले रखी है कि हमने जो है वो पीटीआई के जो सादा लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो आज भी जो है वो चाहते थे कि यार दूसरी दो पार्टियों से जो काम नहीं हुए वो हम करेंगे, तो उन्हें वरगला के जो है वो इस्तेमाल कर दिया। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन और मुज़ाकरात जहाँ पे हो रहे होते हैं वहां पे, यहाँ पे सेनेट के अंदर, हर जगह से जो है वो यूट्यूबर खड़े होकर अपना लाइव शो कर रहे होते हैं, और उस लाइव शो में एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो यूट्यूबर जैसे मतीउल्लाह जान सबको दे ले तो वो खड़ा होके जो है वो डिक्टेशन दे रहा होता है कि पीटीआई को असल में ये कहना चाहिए, पीटीआई की क़यादत को यूं खड़ा स्टैंड लेना चाहिए, पीटीआई को हुकूमत के सामने ये मुज़ाकरात करने चाहिए, ये जो है वो मुतालबात रखने चाहिए। आप देखें कि मीडिया का काम ये नहीं होता वो किसी पार्टी को डिक्टेशन दे, वो पार्टी ने जो पॉलिसी ली है, जो भी उसकी लाइन है, वो अवाम के सामने लेके आता है, लेकिन वो उन्हें वरगलाता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर उल्टी गंगा बहती है और इस शायद हमारे जो पार्टी के सरबराहान है वो भी अब इसके आदी हो गए हैं और उन्हें हर वक्त जो है वो अपने हक में तारीफें सुनना जो है वो पसंद है। वो जेल में बैठे हुए भी ये सोचने पर आमादा नहीं है कि हमसे कौन कौन सी गलतियां हुई और उन गलतियों की वजह से आज हमें ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो इमरान खान का साहब की भी जो शख्सियत है वो भी इसी का असीर हो चुकी है।
1: तो जंजुआ साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपने केसेस का जो है वो फेस करना चाहिए। आपकी बात सही है कि पार्टी अपनी जगह है लेकिन केसेस अपनी जगह है, केसेस लड़े, वकला उनके पास मौजूद है, टीम उनके पास मौजूद है, अपनी केसेस होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बढ़िया मीडिया के एंकर हैं, अपना क्या नाम है, वो अक्सर आप भी उनको सुनते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये 9 मई का वाकया हुआ, ये जनरल फैज साहब और इमरान खान की प्लानिंग थी, अगर स्टेट के खिलाफ कोई बगावत करता है तो उसका भी तो कोई कानून होगा।
3: आप जिस मुल्क में मैं और आप रहते हैं यहाँ पे, मुझे आप किसी भी शख्स के अंदर जो बड़े बड़े जो है वो ताकतवर बनते हैं और बड़े बहादुर बनते हैं, उन्हें बोले कि आप वज़ीर आज़म को गाली दिखा, एक गाली निकाल के मुझे दिखा दो, आप उस सिस्टम के ऊपर जो लोग बैठे हैं आप उन्हें ये कह के दिखा दो अपने वीडियो व्लॉग के अंदर कि ये करप्ट है, और फिर देखो आपका अंजाम क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह का मस्खरापन इतना आम हो चुका है कि हमारी आवाम जो है वो इसके अलावा कोई खबर सुनने को तैयार नहीं है कि उन्हें ये खबर मिले कि मुर्गी ने चूंग मार के जाद को नीचे गिरा दिया, या ये खबर हो कि राह चलते हुए राहगीर ने कुत्ते को काट लिया। वो जो अच्छी खबर होती है वो नहीं सुनती, उन्हें जो है वो ऐसी खबर सुनने की आदी हो गई है हमारी आवाम के, जिसका कोई सर पैर नहीं होता। और फिर वही जाके लोग जो है वो नाई की दुकान पे या किसी मिनाजुल कुरान के सेंटर पे जाके इस तरह की लायानी बातें करते हैं और वहां पे अपना एक नया फैन क्लब बनाते हैं, और फिर वो वहां पे बैठे हुए लोग इस शख्स को अपना जो है वो एक रहनुमा बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तमाशा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, यही बैरून मुल्क जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं ये कर रहे होते हैं, और इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान को इन चैलेंजेस का सामना है। लेकिन राजा साहब, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की जो बदमाशियां हैं, इस तरह की जो हरकतें हैं, उनका अंजाम ये होगा कि आइंदा जब ये लोग पाकिस्तान जाना चाहेंगे तो इनके वीजे नहीं लगेंगे, ये जब ऑनलाइन वीजा अप्लाई करेंगे तो इन्हें जो है वो हमारे जितने सफारतखाने हैं उनका वीजा रिजेक्ट करेंगे, वो कहेंगे कि आप पर्सनली आए, और जब ये पर्सनली वीडियो बेल के ऊपर आएंगे तो वहां पे वो आइडेंटिफाई होंगे कि ये तो वही लोग हैं जो पाकिस्तान को गाड़ियां देते थे, फील्ड मार्शल को गाड़ियां देते थे। तो दहशतगर्दी के जुर्म की वजह से इनके जो आईडी कार्ड्स हैं वो ब्लॉक होंगे, और फिर इन्हें समझ आएगी कि हमने पाकिस्तान जाना था, अपने अपने वालदैन को मिलना था, या अपनी जायदाद अपनी जमीनों को का बंटवारा करना था, तो हमारे लिए क्या क्या हम सीटें खड़ी हुई हैं। चले ये लोग तो ऐसे हैं कि नहीं नहीं पाकिस्तान से कोई गर्द नहीं है, लेकिन इनकी वजह से एक आम आदमी जो है वो बुरे तरीके से मुतासर होगा, और उसके लिए भी अपने मुल्क में जाना जो है वो मुश्किल होगा। और अगर वहां पे इसका दहशतगर्दी में नाम है तो उस जब इसका डोमिसाइल आएगा कि ये बंदा दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व है, तो ये जहाँ पे जब इनके बच्चे अप्लाई करेंगे, जहाँ पे आप देखें ओसामा बिन लादेन के बेटा अगर आपकी किसी कंपनी में आता है और जॉब अप्लाई करता है तो आप नहीं देंगे, आपको पता है कि यार ये तो एक दहशतगर्द का बेटा है और ये बंदा तो जो है उसने तो पूरी दुनिया को वक्ता डाल दिया था। तो इसी तरह ये लोग जो है इनके बारे में भी इसी तरह का गुमान होगा कि यार इन लोगों से पनाह अच्छी, इन लोगों को बेहतर है कि अपने माशरे से, अपने कल्चर से, अपनी कंपनी से और अपने खानदान से, अपने आप से, इन्हें अपने इलाके से दूर ही रखा जाए। तो ये अगर इन लोगों को इस चीज का इदराक नहीं है तो जब इदराक होगा उस वक्त पानी सर से गुजर चुका होगा और इन्हें इनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
1: जंजुआ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप थिंक टैंक है, एनालाइज करते हैं, तो ये जो हर 5, 6, 7 साल बाद जो एक स्टेज बनाया जाता है उस पर ये तमाशा लगाया जाता है, उससे पहले इंग्लैंड में मुलाकातें की जाती हैं और उसके बाद जो अमल दरामद शुरू हो जाता है, उसके चौधरी सरवर साहब भी एक्टिव हो जाते हैं और दूसरे लोग भी एक्टिव हो जाते हैं, आपके किबला हजूर भी एक्टिव हो जाते हैं, चूँकि वो सारे प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने करीब से देखी हैं।
3: अभी आप देखें क्यूम निजामी ने जो जिसका किसी दौर में वो पीपल्स पार्टी के दौर में या जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में वजीर भी रहा है, लेकिन बढ़ापा है, अब उसका पीपल्स पार्टी के अंदर कोई उसे पूछता नहीं है, कोई उसे मीडिया के अंदर पूछता नहीं है, तो उसका भी दिल करता है कि मेरा भी किसी अखबार में नाम हो, चंद लोग मुझसे भी मोहब्बत करने वाले हों, चंद लोगों को पता हो कि मैं भी जो है वो सबका लीडर था। तो अब उसने एक नया बतंगड़ छोड़ा है कि ताहिरुल कादरी पाकिस्तान आ रहे हैं, और मैं आपको चैलेंज देता हूं आज के प्रोग्राम में कि ताहिरुल कादरी कभी जिंदा पाकिस्तान नहीं जाएगा, उसकी जब भी जाएगी मूर्ति जाएगी, और इसलिए वो वापस नहीं जाना चाहते तारुण कादरी साहब। हालांकि वहां पे उन्होंने जो महल बनाया उनका दिल करता है मैं वो सऊदी हुकूमत से खूब सऊदी शहजादों से ज्यादा खूबसूरत महल है जो तारुण कादरी साहब ने बनाया है। उसका एक बेड इतने इतने का है कि आप यहाँ पे जो है वो 60-70 हजार पाउंड की या डॉलर की गाड़ी बेचे तो उसका उस माल के अंदर जो बेड रखा हुआ है जो डाइनिंग टेबल है वो एक आप खरीद सकते हैं। तो इतना उसके ऊपर लक्जोरियस काम हुआ है, इतना उसके ऊपर जो है वो करोड़ों के हिसाब से चित्रकारी हुई है, दुनिया के कई कई ममालिक से उसकी टाइलें गई हैं, डेकोरेशन गई है, तो दिल उनका भी करता है कि मैं वहां पे जाऊं। लेकिन वो सोचते हैं कि अगर मैं वहां पे गया तो मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा है, अगर हुकूमत ने मुझे जेल में डाल दिया तो मेरा तो वो सारा जो भूत है शेखुल इस्लाम होने का वो तो निकल जाएगा। तो लिहाजा चाहते या ना चाहते हुए मैं यूरोप में ही रहूं। तो आप देखें वो कनाडा से 20 घंटे की फ्लाइट पकड़ के बर्तानिया में आते हैं, तो बर्तानिया के अंदर रहते हैं, यूरोप में जाते हैं, यहाँ पे सारी अय्याशी होती है, पूरा कुंबा जो है वो फैमिली हॉलीडे करता है। लेकिन यहाँ से वो 5-6 घंटे की फ्लाइट लेके अपने भाई का नमाज जनाजा पढ़ने भी नहीं जाते, यहाँ से वो फ्लाइट लेके मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में शामिल होना भी गुवारा नहीं करते, यहाँ से वो 6-7 घंटे की फ्लाइट लेके आप खुद अपनी मर्जी से अपनी पसंद से उन्होंने अपना मकबरा बनाया जो अल मारूफ गोशाए दरूद है उसे भी देखने नहीं जाते और यहीं से वापस जाते हैं और फिर टेलीफोन के ऊपर खिताब करते हैं। तो ये कितनी ज्यादती है, वहां पे उनके मदा वहां पे फैन बैठे हैं कि क्यों हजूर आपने तो कहा था कि 90 की दहाई में दुनिया भर में मुस्तफ़ी इंकलाब आ चुका होगा, तो वो मुस्तफ़ी इंकलाब पाकिस्तान में तो नहीं आया लेकिन उनकी जात में आ गया, उनके खानदान में आ गया। और आप देख सकते हैं कि 90 की दहाई में कादरी साहब की जो दाढ़ी है वो 8 इंच थी और जो है उनका रहन सहन बिल्कुल एक आम आदमी की तरह था, बल्कि उनके पास अपने बच्चों को दूध पिलाने के पैसे नहीं होते थे। और आज वो खरबपति है, आज उनका वो जो लिबास रात को एक दफा पहनते हैं वो दोबारा दूसरा अगली रात को भी नहीं पहनते, जो कपड़े वो आज पहनते हैं वो दोबारा नहीं पहनते, जो शूज उनके पास एक है जो आज होते हैं वो अगले दिन नहीं पहनते। वो कादरी साहब के बेटे की आपने तस्वीर मेरे साथ देखी होगी जो बड़ी वायरल हुई थी कि मेरे साथ उनका बेटा खड़ा है, ये असल की बात कर रहा हूं, उसके एक पांव में चप्पल है हवाई चप्पल है जिसे वो कहते थे बाटा की चप्पल, और दूसरे में जो है वो पेशावरी खेड़ी है। तो ये इनकी हालत होती थी और आज वो बंदा जो है वो बंदे से हाथ बाद में मिलाता है और 10 टिशू से जाली पसीना साफ करता है, अपने हाथ साफ करता है कि मुझे जो है वो कई लोगों के जरासीम ना लग जाए। तो उनको उठने बैठने के ऊपर 60-70 हजार पाउंड के सेशन करवाए जाते हैं कि जब आपने अपने गरीब गुरबे या डोनेशन देने वालों से मिलना है तो उस वक्त आपने कैसे मिलना है, जब आपने अमीर लोगों से मिलना है तो उस वक्त कैसे मिलना है, जब कोई बड़ा फंड देने वाला होगा तो उसका आपने इस्तकबाल कैसे करना है, और जब छोटे लोग जो सिर्फ आपकी पोस्टें शेयर करते हैं जब आपने उनसे मिलना है तो किस हकारत से उनकी तरफ देखना है, ताकि वो सारी जिंदगी इसी इंतजार में रहे कि किबला ने एयरपोर्ट से निकलते हुए मुस्कुरा के तेरी तरफ देखा था या मेरी तरफ देखा था। और फिर जो है वो गाड़ी में बैठ के हाथ ला के चले गए थे और फिर जो है ये लोग जो है वो अपने अपने रेस्टोरेंट पे जाके खाना खा के 2-3 घंटे की फ्लाइट लेके वापस अपने घरों को चले जाते हैं। तो ये तो इन लोगों का हाल है। ऐसे छिछोरों से अगर आप इंकलाब की उम्मीद लगा के रखें, तब्दीली की उम्मीद लगा के रखें, तो तब्दीली नहीं आने वाली। मुझे आज भी कादरी साहब की ये बात जो है वो मेरे कानों में रस घोलती है, जब उन्होंने कहा कि इमरान खान वो ऐसा शख्स है कि ये तो पाकिस्तान में काउंसलर बनने का अहल नहीं था, और उनका गिला ही पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में ये है कि मैं जिसको काउंसलर बनने का अहल नहीं समझता था आपने उसे वजीर आजम बना दिया, और मेरे साथ आपने झूठे वादे किए, मुझसे लॉन्ग मार्च करवाए और पैसे दे के मुझे वो टरखा दिया, ओहदा आपने कुछ भी नहीं दिया। तो ये एक तलख हकीकत है, इसका जितना जल्दी जल्दी इदराक हमारी कौम को होगा उतना ही उसका भला होगा। वरना ये है कि आज ये लोग कादरी साहब के फैन हैं और पैसा सारा ही उनके ऊपर खर्चते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जिनके पास अपने घर की मॉर्गेज अदा करने के पैसे नहीं है, ऐसे लोग भी जानता हूं जो अपनी मिसेज को एक जो है वो 10 पाउंड भी जो है वो हफ्ते के नहीं देते। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि उनके घर के अंदर जो है वो लड़ाइयां होती रहती हैं कि ये अपने बच्चों को कुछ नहीं देता, लेकिन वही शख्स जब कादरी साहब आते हैं तो 5-5-6-6 पाउंड का खर्चा करके नए कपड़े पहन के उधर जाके बैठा होता है और वहां पे जो है वो डोनेशन दे रहा होता है। ये जहनी प्रागंदगी है, यही गुलामाना जहनीयत है। वरना अगर आप सोचें तो हमें ये मौलवी बताते हैं ना कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैमंद लगे कपड़े पहनते थे, और यही बताते लोगों ने हमें बताया कि बाहर से एक वफद आया और वो इस तलाश में था कि हमने अमीर उल मोमिनीन उमर फारूक से मिलना है, और रास्ते में उसने देखा कि चट्टान के ऊपर सर रख के एक शख्स लेटा है और उससे वो पूछ रहे हैं कि उमर फारूक कौन सा है, उमर फारूक से हमने मिलना है। और उसने कहा कि आप जाएं वहां पे उसका दरबार है। तो जब वो वहां दरबार में पहुंचे तो देखा वही शख्स बैठा हुआ है, तो वो हैरान हो गए कि ये तो वही शख्स था जिससे हमने रास्ता पूछा था। आज मुझे बताएं कि पाकिस्तान के किस मौलवी का, किस शेखुल इस्लाम का रहन सहन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है, किसके कपड़े पैमंद लगे हैं, किसके घर में जो है वो फाके होते हैं। बल्कि आप देखें कि हमारा तो जुल्म और ज्यादती ये है कि हम तो जिस गौसुल आजम सईदना गौसुल आजम का नाम लेके हम जो है वो 11वीं शरीफ और इस तरह के खत्म जो है वो करवाने चाहिए, मगर उनके खत्म और दुरूद जो है वो रोजे से होते थे। वो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखते थे, और हम जो है वो बिरयानियां बनाते हैं, बिरयानी की धूनी देते हैं और रंग बिरंगी खाने देते हैं। तो ये हमारा जो उलमा ने, मैं सब की बात नहीं कर रहा, मैं इसी तरह के जो आज खुद बने हुए उलमा हैं, शेखुल इस्लाम है या उनके बेटे हैं, जिनका रहन सहन खरबपति लोगों जैसा है, बड़े बड़े अमीर बादशाहों जैसा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि इनकी वजह से नई नस्ल इस्लाम से मुतनफर हो रही है, वो इस्लामी कल्चर से मुतनफर हो रही है। वो कहती है कि हमें तो कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहन सहन बड़ा सादा था, दिन में हमें एक भी मौलवी दिखा दे, एक पीर दिखा दे, एक कोई मजहबी ऐसा बंदा दिखा दे जिसके आज के दौर में कपड़े जो है वो पैमद लगे हों, जिसका रहना सहना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की इत्तबा में हो। इनके पास खरबों की गाड़ियां हैं, खरबों का प्रोटोकॉल है। जब ये चलते हैं तो 40 बंदे आगे होते हैं, 40 बंदे पीछे होते हैं, और ये उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं कि जो हिजरत करके मक्का से मदीना जा रहे हैं। तो एक ही ऊंट है, क्या सहाबाए किराम साथ नहीं थे? क्या वहां पे इस्तकबाल करने वाले नहीं थे? नहीं थे, सब कुछ था, मगर उसके ऊपर बारी बारी कभी गुलाम ऊंट के ऊपर सवारी करता है, कभी आका सवारी करते हैं, और जब मदीना शरीफ में दाखिला होता है तो गुलाम उसके ऊपर बैठा है। नहीं कहा जाता कि ये हमारा प्रोटोकॉल होगा और जो है वो सारे लोग आगे पीछे होंगे और इस तरह का एक तमाशा लगा होगा जैसे ये मौलवियों ने लगाया हुआ होता है। तो हमें जो है वो पनाह मांगनी चाहिए और हमें अल्लाह के हजूर तौबा और इस्तगफार करनी चाहिए कि हमारे ऊपर इस तरह के लोग मसल्लत हो गए हैं कि जिनका ना कोई दीन से तल्लक है, ना इनका पाकिस्तान से कोई तल्लक है, ना इनसे इन्हें पाकिस्तान से कोई हमदर्दी है, ना इन्हें इस्लाम से कोई हमदर्दी है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी ये है कि इनके बच्चे जो है वो खरबपतियों, वो अय्याशियां करें और अवाम के पैसों से, और अवाम पैसे दे चैरिटी के नाम पे, और इसका उसका जो है वो क्रेडिट ये लोग खुद लेते हैं कि फलां मौलवी ने, फलां पीर ने, फलां शेखुल इस्लाम ने, देखे क्या बना दिया भाई, क्या खाक बना दिए, क्या ये पैसे उसने अपनी तरफ से खींचे हैं? क्या आज तक मुझे किसी एक पीर का, किसी एक मौलवी का, किसी एक शेखुल इस्लाम का मुझे जो है वो टैक्स रिकॉर्ड निकाल के दिखाए कि ये कितना टैक्स पे करता है, इसकी इनकम कितनी है? मैं चैलेंज करता हूं कि मुझे दिखा दे कि चले, मैं बाकी मौलवियों की बात बाद में करूंगा, मुझे आज तक कोई मिराजी दिखा दे कि ताहिर उल कादरी का बिजनेस क्या है, ताहिर उल कादरी की इनकम क्या है, ताहिर उल कादरी के बच्चों का बिजनेस क्या है, क्या आज भी वो स्कूलों के बस्ते बेच के ये खरबपति होके याचिया कर रहे हैं? राजा साहब, आज के प्रोग्राम की वसादत से मैं डेनमार्क में, नॉर्वे में, जहां जहां ये आपका प्रोग्राम जा रहा है, फ्रांस में, मैं चैलेंज करता हूं, बल्कि वो हमारे राजा साहब जो जेलम से हैं, दीना से हैं, जो आजकल मिनहाजुल कुरान के जो है वो बड़े अहदेदार हैं, बड़ी मोहब्बत है उन्हें, मैं चैलेंज करता हूं कि वो मुझे बता दें कि ताहिर उल कादरी का कारोबार क्या है, ताहिर उल कादरी के बच्चों का रोजगार क्या है, और वो कितना टैक्स पे करते हैं, और वो बिजनेस है कहाँ पे, उन्हें मुझे उनके बिजनेस के टैक्स के गोशवारे दिखा दे। आई चैलेंज यू, नोबडी विल एक्सेप्ट दिस चैलेंज। जी हाँ साहब,
1: شاہ جنجوا صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا، لیکن شاہ جنجوا صاحب اکثر آپ کپڑوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ایک دن پہنتے ہیں دوسرے دن نہیں پہنتے، کیا وہ کپڑے اتنے گندے ہو جاتے ہیں کہ وہ پہنے نہیں جا سکتے؟
3: نہیں، ان کے ٹھیکے ہیں بڑے بڑے، جو ڈیزائنر کمپنی ہیں ان کے ساتھ ٹھیکے ہیں۔ میں اور آپ لوگ اگر ہمیں بڑا ہی جو ہمارے پاس جو ہے وہ شہنشاہ ہی آئے گی، ہم بڑے خوش ہوں گے، تو ہم کسی نیکسٹ پہ چلے جائیں گے، کسی پرنسپل شاپ پہ چلے جائیں گے، کسی اچھی دکان پہ جائیں گے اور وہاں پہ 100 پاؤنڈ کا کوئی شوز لے لیں گے، وہاں پہ کوئی 100-150 پاؤنڈ کا کوئی جو ہے وہ سوٹ لے لیں گے۔ لیکن یہ ایسی شاپوں کے نزدیک سے گزرنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ان کے جوڑے، ان کا لباس، ان کی بہوؤں کے لباس آپ دیکھ لیں، وہ کپڑے ایسی ڈیزائنر شاپس کے اوپر بنتے ہیں کہ جہاں سے کوئی عام بندہ اس راستے سے نہیں گزر سکتا، وہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ پرس بنتے ہیں، بیگ بنتے ہیں، اسی میچنگ ان کے ساتھ جو ہے وہ جیکٹس بنتی ہیں، کوٹ بنتے ہیں، شوز لیے جاتے ہیں، اور پھر ان کمپنیوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے، آپ نے یہ بناتے جانا ہے اور انہوں نے خریدتے جانا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں ان کا لباس، یہ آپ کے پاس سوشل میڈیا آپ ڈالیں، باجی غزالہ ڈال لیں، قادری صاحب کی باقی بہوئیں ڈال لیں، پھر آپ ان کا لباس دیں۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق حلال دے اور اس سے یہ اپنی چیزیں خریدیں۔ لیکن آپ قادری صاحب کے کپڑے دیکھ لیں، جب وہ آتے ہیں یہاں پہ تو وہ جتنے بدبودار کپڑے ہوتے ہیں، جتنے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، جتنے کپڑے انہیں چھوٹے ہو جاتے ہیں یا وہ ان کا سائز اچھا نہیں رہتا، وہ کسی ایک بھی جو ہے وہ جائل اپنے مرید کو اس کے گلے میں پہنا دیتے ہیں، بے شک وہ اسے پورا ہو یا نہ ہو، تو وہ بندہ بھی جو ہے وہ قادری صاحب کا کوٹ پہن کے خوش ہو جاتا ہے، بے شک وہ اسے جو ہے وہ بالکل اس کا سائز نہ ہو، اور وہ دیکھ رہا ہو کہ یار اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، لیکن وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ اس طرح کی کوئی جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کرے گا تو جتنے قادری صاحب کے باقی فین ہیں وہ تو کہیں گے کہ یار یہ ناشکر ہے، اس کو تو چاہیے کہ قادری صاحب جو ہے وہ اگر کھانسی کریں، اگر انہیں فلو لگا ہوا اور وہ اپنا ناک صاف کر کے بھی اگر اس کے اوپر ٹیشو کے اوپر رکھ کے دیں، تو اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اٹھا کے جائے اور اپنی وائف کے چہرے پہ ملے کے دیکھے یہ قبلہ کی خوشبو آئی ہے۔ تو اس طرح کی ذہنیت ہے جو براجل قرآن کے اندر ہے، ورنہ جو ہے وہ حقیقت آج کل سب پہ یہاں ہے، اور حقیقت صرف یہ ہے کہ یہ ناکام لوگ ہیں، یہ فیلڈ ہیں، یہ صرف فیملی پروموشن کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور صرف اپنے پروٹوکول کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ اگر کسی جگہ پہ جاب کریں تو انہیں شاید اس قابل نہیں ہے کہ انہیں کسی شاپ کے اوپر جاب بھی ملے۔ تو یہ باپ کی بنائی ہوئی چیریٹی سے جو انہوں نے مدرسے بنائے ہیں، وہاں پہ کوئی چیئرمین لگا ہوا ہے، کوئی پریزیڈنٹ لگا ہوا ہے، اور کسی کا پتہ نہیں، ایک ایک بچے کے پاس 10-10 عہدے ہیں۔ قبلہ حضور نے بھی تو تقسیم کی ہوئی ہے نا، انہوں نے تقسیم کی ہے کہ مثلاً جو پاکستان سے انکم آئے گی یا دبئی سے جو پراپرٹی کے بزنس سے انکم آئے گی وہ بڑے بیٹے کے لیے، جو یورپ سے آئے گی وہ چھوٹے بیٹے کے لیے، جو کینیڈا اور آسٹریلیا سے آئے گا وہ جو ہے وہ پوتے کے لیے۔ تو اس طرح انہوں نے بھی اپنی بادشاہ کے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ اس کی حد بندی کی ہوئی ہے، اور اسے جو ہے وہ تقسیم کیا ہوا ہے اپنی انکم کو۔ جی رائے صاحب،
1: یوا صاحب آپ نے بہت ساری باتوں کا احاطہ کیا، لیکن ایک بات بار بار ذہن میں آتی ہے، لوگ سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، اور آپ پھر بھی اس کے باوجود آپ قبلہ حضور کہتے ہیں، آپ کو اتنی محبت ہے ان سے، شاید یوا صاحب وہ 65 سال والی عمر کا کیا بنا، کیا وہ کینسل ہو گیا پروجیکٹ؟
3: وہ جو قبلہ کو آنی تھی، دیکھیں جب تک قبلہ حضور کی جو ایج ہے وہ 63 ایئر تھی، تو اس وقت تک جو ہے وہ پھر بھی وہ بہت ساری چیزوں کا حیا کرتے تھے، ان کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا چلو 10 جھوٹ بولے ہیں تو ایک آدھ سچ بھی بول دو۔ تو جو ہی عمر ان کی جو ہے وہ 63 برس سے اوپر ہوئی ہے، اور وہ جو ان کے اوپر موت آنی تھی جس کی انہیں گارنٹی دی گئی تھی کہ 63 برس میں یا 64 برس میں آئے گی، وہ نہیں آئی، تو اس وقت قبلہ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ اتنے معذور ہو گئے ہیں کہ اب وہ اسلامی قانون کو، اسلامی ثقافت کو، اپنے کسی وعدے کا انہیں کوئی حیا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک طرف آپ سوشل، میں ابھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ اٹھائیں ذرا فیس بک، اور فیس بک کے اوپر آپ لکھیں ڈاکٹر طاہر القادری، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان طاہر القادری جو ہے وہ ہر چیز کی مذمت کر رہے ہیں، مکمل طور پہ سیاسی ہیں، پاکستان کے حالات کی انہیں اتنی خبر ہے کہ جتنی کسی پرندے کو بھی نہیں ہوتی، جتنی حکومتیں وقت کو نہیں ہوتی۔ लेकिन उसी ताहिर अल-कादरी को फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, ईरान और अमेरिका के अंदर हो रहा है, उसका पता ही नहीं। आपने कभी बयान नहीं सुना होगा अब ताहिर अल-कादरी के मुंह से कि ये जो इतना फलस्तीन के अंदर गजा के अंदर तबाही हुई है, वैसी भी मजम्मत किसी मिनाजी के मुंह से आपने उसकी मजम्मत नहीं देखी होगी। आपने ये नहीं सुना होगा कि अमेरिका ने जो हमला किया ईरान के ऊपर नाजायज है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि जो हौसी है ये मक्का और मदीना के ऊपर जो हमले कर रहे हैं ये मुसलमानों को कबूल नहीं है। कभी आपने उनके मुंह से ये तारीफ नहीं सुनी होगी कि ये जो पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान पे हमला, हरमैन शरीफैन के ऊपर हमला, हम इसका बदला लेंगे और किसी को इसकी इजाजत नहीं देगी और ऐसा हमला करने वाले की जो जसारत है उसे कुचल दिया जाएगा। कभी आपने ये किसी मिनाजी के मुंह से नहीं सुना होगा। लेकिन सुना क्या होगा, आप जरा फेसबुक के ऊपर खोल ले पेज तो आपको हंसी आएगी। लिखा होगा कि जी ताहिर अल-कादरी के बगैर दुनिया में इंकलाब नहीं आ सकता। ताहिर अल-कादरी के बाप को भी ये खबर नहीं होगी कि ये बयान दिया किसने है। लेकिन बस एक पेड मीडिया है, पेड लोग बैठे हैं और वो अपनी तरफ से बयान दाग रहे होते हैं कि कादरी ने ये कहा, ताहिर अल-कादरी के बेटे ने कहा, ताहिर अल-कादरी के मिसरी ने ये बात कह दी, उसकी बेटी ने ये बात कह दी, बहू ने ये बात कह दी। और होता क्या है कि वो उनकी जो है वो पिक्चरें उठाते हैं, पिक्चरें भी आप देखें तो अल्लाह इल्ला माशाल्लाह। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि ये जो आजकल आप ये फितना देखते हैं कि दरबारों के ऊपर ढोल बाज रहे हैं, नाथ खान आता है और नाथ खान जो है वो बेले लेता है और तरह तरह के तमाशे करता है, म्यूजिक चलता है, गानों की तर्ज पे नाते पड़ते हैं, तो इसका मुजिब कौन है? ये जो कारी शायद ने आके तमाशा करता है, इस कारी शायद को यूरोप में लाने वाला मिनाजुल कुरान है। सबसे पहले ब्रेडफोर्ड में वो आया बंदा और उसे ये हर बुराई और फितने का मूजद इस वक्त मिनाजुल कुरान है। वरना इससे पहले होता था कि जब भी मिलाद पाक का महीना आता, इस्लामी तारीख है कि लोग रोजा रखते, जब 27 मार्च आता तो लोग जो है वो अबादात करते, रात को तौबा अस्तगफार करते। फिर हमने देखा कि जब भी 27 मार्च आना है तो चूंकि अपना 27वां जो है वो रमजान की रात आनी है, तो फिर कादरी साहब ने कहना है कि जी आपने पूरे पाकिस्तान से बसें भर के लाहौर लेके आनी है। और वो बसें लाहौर में आती तो उस वक्त जो है वो कादरी साहब का खिताब जो है वो उन्हें सुनाया जाता और कादरी साहब सारी रात खिताब करते, खिताब करके जो है वो ना तो ना किसी ने तौबा इस्तगफार करनी, ना जो है वो किसी ने नमाज पढ़नी, और फजर की नमाज भी नहीं लोग पढ़ते थे। लोग जो है वो दीना से, जेलम से, पिंडी से जो है वो दिन को बसें लेके निकलते, कोई नमाज नहीं है, कोई रोजा नहीं है, या रोजा चलो किसी ने रखा हुआ है, नमाज नहीं है, वक्त में अफतारी नहीं है, वो लाहौर पहुंचना, वहां पे खाने पे टूट पड़ना, खाने के बाद तरावीज किसी ने 5 पढ़ी, किसी ने 10 पढ़ी, किसी ने 12 पढ़ी, किसी ने 20 भी पढ़ ली, उसके बाद कादरी साहब का खिताब सुनने और फिर बसों में बैठने और वापसी करवानी। वो जो 27वीं रात का एक इस्लामी तरीका था कि तौबा इस्तगफार करनी है, अल्लाह के हुजूर सर मस्जूद होना है, वो सारा खत्म हो गया, वो तकरीर सुनने के ऊपर उसका इक्तफा हो गया। आज यही जो बिदात है, यही जो चीजें हैं, इसको लेके मिनाजुल कुरान चल रहे। तो कादरी साहब जो है वो उन्होंने जो इस्लाम की तजदीद की है वो ये है कि उसमें पॉलिटिकली कंप्रोमाइज्ड इस्लाम के वो नैरेटिव है, वो जिहाद के नैरेटिव नहीं है, और ऐसे इस्लाम के, ऐसी रवायात के मुजद है जिसका कुरान से कोई तलक नहीं है, कुरान में उनकी असल नहीं है। बस यही कादरी साहब का शेखुल इस्लाम है। बल्कि उनके बेटे ने कहा है कि दुनिया देखेगी कि कादरी, वक्त आएगा कि कहेगी कि शेखुल इस्लाम ने ये बात कही थी, शेखुल इस्लाम ने ये मौकफ इख्तियार किया था और वही आके है। तो अगर उनके बेटे हुसैन की अगर बात आप मान लें तो आइंदा आने वाले चंद सालों के बाद दुनिया ये कहेगी कि जब सीरिया के ऊपर जो है वो इसराइल हमले कर रहा था, जब ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका के हमले हो रहे थे, तो अगर वो उन हमलों में यहूद और नसारा का मौकफ दुरुस्त ना होता तो ताहिर अल-कादरी उसकी मुखालफत करते, और ताहिर अल-कादरी की खामोशी इसका मतलब ये था कि उनकी तरफ से ताईद थी कि जितना हो सकता है आप गजा को तबाह कर दो, ईरान को तबाह कर दो, सऊदी अरब के ऊपर हमले करो, मेरा इस्लाम ये कहता है कि हम खामोश रहें, گویا خاموش تائید، یہ طاہر القادری کا اسلام ہے اور یہی شیخ الاسلام کا موقف ہے. جی رائے صاحب.
1: جی صاحب آپ کا قیمتی ٹائم ہے، آپ نے کہیں جانا بھی ہوگا، تو آخر میں آپ ہمارے سامعین ناظرین کو بتا دیں کہ یہ جو عقل کی آپ بات کرتے ہیں، لوگ جو جذبات سے سوچتے ہیں، انالائز نہیں کرتے، خود جو اسلامی کتب کو نہیں پڑھتے، قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کرتے، وہاں بدعت کے بارے میں پڑھتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا میں سب کو معاف کر دوں گا لیکن بدعتی کو معاف نہیں کروں گا، اس طرف توجہ نہیں دیتے، جو آپ نے ذکر ساری چیزوں کا کیا.
3: رائے صاحب یہ بدعت کو جو چھوڑ دیں، یہ تو شرک کے اندر مبتلا ہیں، یہ شرک کے اندر مبتلا ہیں، یہ قرآن و حدیث کو نہیں پڑھتے. ان کا آپ مجھے بتائیے کہ ایک بندہ ہے، وہ اپنے بیڈ میں سویا ہے، کرٹن بند ہے، رضائی کی ہوئی ہے اس نے، اور وہ یہی سوچ رہا ہے کہ جہاں میں لیٹا ہوں یہی ساری کل کائنات ہے. اسے آپ کیسے سمجھائیں گے کہ بھائی باہر تو روشنی ہو گئی ہے، دن کے 2 بج چکے ہیں، وہاں پہ چہل پہل ہے، خریداری ہو رہی ہے، نظام چل رہا ہے، ساری دنیا جو ہے وہ جاگ چکی ہے، مگر چونکہ وہ سویا ہوا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو منہاج القرآن کے لوگوں کا یہی حال ہے، ان کی آنکھیں بند ہیں، اور ان کی آنکھیں ایک آنکھ ان کی کانی ہے اور دوسری کھلی ہے، اور جو دوسری کھلی ہوئی ہے اس میں وہ صرف طاہر القادری کو دیکھتے ہیں. اس لیے ان کا شعور اجاگر نہیں ہوتا کہ یہ کسی اور کو پڑھے، یہ کسی اور کو سنے، یہ کوئی مطالعہ کرے تو انہیں پتا چلے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اور ان کا جو قائد ہے وہ بھی کینیڈا میں بیٹھا ہے.
1: یہ جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا چلتا ہے، سوشل میڈیا پیسے کمانے کے لیے بہت ساری حرکات کی جاتی ہے، تو جب سٹیٹ کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے تو سٹیٹ کیوں ان کو اتنی زیادہ چھوٹ دیتا ہے؟
3: سٹیٹ کی ترجیحات غلط ہیں. آج پہلی دفعہ یہ ایسا ہوا ہے یا پچھلے 1-2 میں کہ فیلڈ مارشل نے ایک فیصلہ کیا کہ کسی بھی فسادی کو، کسی بھی انتہا پسند کو، کسی بھی جو ہے وہ تبدیلی کے خان کو، کسی بھی فتنہ پرور کو اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ ان کا دلیرانہ فیصلہ ہے. آج اس فیصلے کے اوپر وہ قائم ہے، اور بتدریج پاکستان کے اندر انتہا پسندی اور دہشت گردی کو ختم کر رہا ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ حکومت اس پہ قائم رہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اب کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ ڈی چوک میں جا کے قبریں کھودے، بلکہ وہ تو اپنی جنہوں نے قبریں کھودی تھی وہ اپنی قبر میں دفن ہونے کے لیے بھی زندہ نہیں آنا چاہتے، ان کی مورتی آئے گی.
1: جی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا.
3: شکریہ صاحب.
1: سامعین ناظرین یہ تھے شاہ جنجوا صاحب جو کہ برطانیہ کی فضاؤں سے بات کر رہے تھے. سامعین ناظرین ہمارا کسی کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بات کرنا چاہے، کوئی اس پر روشنی ڈالنا چاہے، کوئی اپنی دلیل دینا چاہے، کوئی بھی منہاج القرآن کا ساتھی آ کر اپنے ٹائم لے کر بات کرنا چاہے تو ان کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا پلیٹ فارم حاضر ہے.
4: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जनाब आज फिर राहिद
2: राहिद
1: अफसरान का प्लेटफॉर्म है कुछ गल्ला बाता प्रोग्राम नंबर 14 लेके। मैं मुमताज मलिक पेरिस फ्रांस तो थोड़ी खिदमत हाजिर हाँ। जनाब उम्मीद कर दिया सब अपने अपने खानदान खैर आफियत होवोगे, जिथे जिथे भी तुसी आबाद हो अल्लाह ताला तुहानू अपनी हिफ्ज़ो अमान च रखे। ते अज दा प्रोग्राम असीं शुरू करन तो पहले दसीए अज साडे खास मेहमान असीं देख लिए ते अज 6 मुल्कां तो 6 लोग तुहाडे सामने मौजूद है जनाब। ते 4 मेहमान 4 मुल्कां तो, मेरे मुंतजम साहब इटली तो, ते मैं आप इसलिए पेरिस फ्रांस तो। ते जनाब वाकई अज इंटरनेशनल खास प्रोग्राम साडा हुण जा रहा है ते तुहानू सारिया नू असीं बहुत बहुत जीआं नू कहने आ। बड़ी मेहरबानी कि तुसीं अपना टाइम कढ़दे हो। प्रोग्राम दे आगाज सब तो पहले अल्लाह ताला दा सोहणा ते मुबारक नां लैण लई मैं दावत देनी आ साजिद नसीर साजिद साहब नू। साजिद भाई तशरीफ ल्याओ ते कुछ आयात ए इलाही दा नू तिलावत करके इस प्रोग्राम दा आगाज करन दी सआदत हासिल करो। जनाब साजिद नसीर साजिद साहब बलजानो इटली
2: जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज बाजी ने सादत दे वास्ते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون

0: हाँ जी, शक्करगढ़ तो अगे बॉर्डर ते जीरो लाइन ते सारे ही। शक्करगढ़
1: सही
0: ते कभी आए नहीं सी, जो शहर आए तो फिर पता लग गया भी शक्करगढ़ भी है।
1: सही। अच्छा ये दसो ना कि स्कूल दे विच
0: हाँ
1: कैसे
0: जी,
1: स्टूडेंट्स हो, जो शुरू शुरू दाखिल कराए,
0: ये
1: शौक से
0: बचपन
1: दाखिल हुए सो
0: जड़े
1: या
0: यार कि
1: जबरदस्ती दाखिल कराया गया सी?
0: कुछ प्यारे हो गए। एक यार जड़ा से जो असि, हाँ
1: शौक ना स्कूल दाखिल हुए सो या फिर जबरदस्ती फाड़ के दाखिल कराया गया सी?
0: भाई, सारे ताए चाचियां ने जाते सी, उन्होंने नाल जाना। एक दफा मार पई ते स्कूल छड़ के घर आ गया, ते प्यो ने कहा भी जेड़ा उस्ताद हुंदा है ना, वो भी प्यो ही हुंदा है, ओदी
1: बेटा
0: गल दा गुस्सा नहीं करना। अज
1: एक
0: ते तो मार पई है ना,
1: तो ये
0: तुसी कल
1: बहुत
0: नू एदे तो सबक हासिल करो। अज छोटे हो, कल वड्डे होवोगे ते फिर पता चलेगा।
1: हाँ सही सही। तो कैसे स्टूडेंट्स हो बचपन इच,
0: तो फिर वो
1: क्लास
0: गल
1: दे
0: बल्ले
1: विच?
0: बन ली, तो फिर छुट्टी नहीं की, फिर कोई गलत काम नहीं किया, शरारत नहीं की, अच्छे तरीके नाल पढ़े। फिर तो
1: सही। जी 5वीं तक की क्लास थी थोड़ी, ओदे विच तुसी लाइक स्टूडेंट रहे हो
0: हुंदा रहा
1: या
0: शुरू से
1: बस
0: पहली
1: शरारती जे बच्चे सो?
0: दूसरी गलती। हाँ जी, नहीं मैं शरारत करते ही नहीं सी शुरू तो, ही शरारत वाला जिन नहीं सी आए, सब नालों मैं साइड से रहना, कल्या कल्या रहना, चुप रहना,
1: अच्छा,
0: शरारत नहीं करनी
1: ज्यादा खुलण मिलण वाली आदत नहीं थी तुहाडी?
0: है। हाँ
1: अच्छा, ते फिर तुसी जो
0: जी,
1: स्कूल की 5वीं क्लास तक तुसी
0: हाँ
1: खामोश
0: जी,
1: रहते थे, दोस्त
0: मतलब
1: दोस्त नहीं बनाए स्कूल की क्लास ही, दोस्त नहीं सन तुहाडे कोई?
0: करो। हाँ जी, स्कूल दे दोस्त जिन्हें भी सी, असि अज भी वापस कदी कदी इकट्ठे होने हैं, मिलने हैं। ते जो पिंड रहते सी, पिंड दे जेड़े मेरे यार जो आज भी यार जेड़े ने, जिदो जाईदा पिंड मिलीदा उन्होंने, जिदो असि पिंड छड़ के आन लगे, ते एक मेरा यार मैनू आया नहीं, ते लेकिन असि जाते हाँ। ते फिर एक कुदरत वालों ऐसा सी कि मैं जिदो पिंड जाना ओनू पता लग जाता सी, तो मैनू स्पेशल मिलन आता सी
1: अच्छा
0: हर दफा। जिदो भी मैं कभी ऐसा चांस नहीं होया उस बंदे ने मैं ना मिलया होवा, या 2 साल पिछे एक हादसा होया, तो पिंड च लड़ाई हुई, तो फायरिंग हो गई, तो गोली लग गई, तो अल्लाह नु प्यारा हो गया। तो लास्ट
1: ओहो,
0: टाइम मैं उन्होंने मिल के आया, तो मैनू कहना भी पता नहीं, लास्ट टाइम उन्होंने जो मिलया ना, मैं क्या यार आ गई हाँ, कहना यार लगता कि असि अगे जाके मिलांगे,
1: हाय
0: हयात सी उदो, तो काफी ओद गल बातें हुई है, तकरीबन 1 घंटा गपशप हुई। और जो
1: ओहो,
0: मैं बाहर आ गया, बाद पता चला भी हादसा हो गया, तो मैं क्या ओदे दिलो सच्चियां गल्ला निकलदियां सी,
1: बिल्कुल
0: वो याद
1: बिल्कुल
0: आंदा कदी कदी, तो बहुत सोहना ओदे नाल टाइम लंघिया। जद भी पिंड जाना ओनू मैं मिलना या ओने मैनू लभ के मिलना, कदी असि
1: सही
0: मिस नहीं कीता है भी, लाजमी मिलना।
1: सही सही। अच्छा, बचपन दी कोई
0: हाँ
1: ऐसी
0: जी,
1: याद है जिहड़ी हुण तक तुहाडे दिली छित थे अटकी हुई है, ते तुसी समझदे हो कि ए गल जिहड़ी है ना अच्छी या बुरी किसी तरह दी वी, जिहड़ी तुसी समझदे हो कि शेयर करना चाहो, कि कोई जिहड़ी तुसी भुलना भी चाहो ते नहीं भुल सकदे, कोई बचपन दी हो 10-12 साल दी उम्र तक दी कोई ऐसी याद?
0: नहीं मैं इस तरह का कोई भी नहीं भी जेड़ी ना, बस यही कि बाद शहर आ गया, मैं तकरीबन 9 साल का जो शहर आ गया, 8 साल का सी, तो फिर शहर का ते पिंड का थोड़ा फर्क होंगे, शहर के विच जेड़ा ना पिंड वर्गा माहौल नहीं सी हैगा,
1: केड़े शहर आए सो उस वेले,
0: ते माँ प्यो ने
1: केड़े शहर आए?
0: सारिया असि नारोवाल, फिर नारोवाल शहर आ गए सी, फिर
1: अच्छा अच्छा ठीक।
0: ते माँ प्यो ने सारिया ख्वाहिशा पूरिया कीतिया। ते जो मैं 14 साल का होया, तो बाबा जी फिर रुखसत हो गए दुनिया तो, वो फिर घर
1: ओ
0: दिया जिम्मेदारियां पै गईया सारी।
1: सही। तो तुसी वड्डे भरा सो जाहिर है,
0: नाले
1: बाकी भैणां भी छोटियां सन तुहाडे कोलों?
0: पढ़ना जैसा
1: ठीक।
0: बाबा आया थे, उन्होंने हर ख्वाहिश पूरी की थी, हर
1: सही,
0: चीज लैके दी।
1: बादशाह ही होंदी है ना,
0: हाँ
1: प्यो दे
0: जी,
1: सिर ते बादशाह ही होंदी है।
0: एक
1: बिल्कुल,
0: भैन वड्डी सी, ते फिर 3 छोटियां सन,
1: छोटे बच्चे सन, सारे छोटे सन ना, सारे तुसी खुद 14 साल दे सो ते तुहाडे कोलों
0: शेर
1: छोटे सारे
0: पढ़िया
1: छोटे बच्चे
0: अलामा
1: सन।
0: इकबाल दा। हाँ जी, मैं अलामा इकबाल दा कि शेर पढ़िया।

0: माशाल्लाह।
1: बिल्कुल
0: अच्छा, कोई बचपन का कोई ऐसा वाकया जिहड़ा तुहानू अज वी ना बहुत ही दिल नू टच करदा है, बहुत यादगार कोई उस जमाने च कोई भी अच्छा या बुरा वाकया जिहड़ा तुहाडे उत्ते बड़ा असरअंदाज होया होए उस 10-12 साल दी उम्र तक।
1: हाँ, मैं बिल्कुल मैं बहुत छोटा जिहा सा। अच्छा, मैं छोटा जिहा सा तो मैनू ना बचपन तो ही बड़ा जिहड़ा ना ये चीज होंदी सी लोगों की मदद करन दी ना। ते मैं ना बाहर देखना कोई कोई बुढ़ी कोई अपना बुजुर्ग कोई जा रहे
0: जरूरतमंद,
1: हैं, कोई
0: हाँ
1: हाँ कोई कोई बुजुर्ग जा रहे नहीं या कुछ भी, यानी कि जारी गल है, पैसे तो नहीं साढ़े को होंगे सन छोटे होंगे, लेकिन यह
0: हाँ
1: होंगे सी कि असी वो देखना कि किसी ने, मैं देखना कोई बुढ़ी अम्मा जा रही है ते उन्हें अच कोई चीज चुकी ऐसी ते वो बेचारी आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, तो मैं कहना अम्मा जी लियाओ है मैनू पढ़ाओ, मैं ताड़ी मदद करना। मैं उन्होंने को फड़ लेनी जबरदस्ती, फड़ के उन्होंने घर उन्होंने घर तक छड़ के आना, इस तरह
0: अच्छा
1: देखना कोई नबीना शख्स है उनका बाजू फड़ लेना, उन्होंने लेके जाना, उन्होंने छड़ के आना। अच्छा, इसे तरह एक अम्मा सी ते मैं देखा ते वो ना बेचारी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता ना जा रही, उनके हाथ से एक चीज भी सी, मैं ना मैं क्या अम्मा जी मैं तुम्हें कितने तुम जाना, कहते इधर जाना, मैं क्या मैं आओ तुम छो, तो मेरा यही काम, मैं ना उन्होंने फड़े बाजू फड़िया, तो मैं उन्होंने को जी उन्होंने गठरी फड़ी सी, मैं फड़ के तो मैं जा रहा, तो मैं जिस तरह ही उन्होंने घर के करीब पहुंचा, थोड़ा जा पिछे ही सा, तो मैंने थले 10 रुपए थले पे हुए नजर आए, तो
0: अच्छा
1: मैं वो फड़े तो मैं उन्होंने दसिया, तो वो थोड़े से ना उन्हों की नजर भी बहुत कमजोर सी, उन्होंने नहीं नजर ना, मैं अम्मा जी मैंने 10 रुपए मिले जे थले पे, तो वो भला गया अम्मा जी की कहने कहते तेरे तेनू इनाम मिले अल्लाह की तरफों, तो मैंने
0: अच्छा
1: छड़न आया ना,
0: वाह वाह
1: तो मैंने छड़न
0: हाँ
1: आया, तो मैंने छड़न आया तो अल्लाह की तरफों इनाम मिले तेनों, तो
0: हाँ
1: मैनू अज भी वो चीज जी ना वो गल नहीं भूल दी।
0: सही।
1: हां जी, फिर इसे तरह ही लोगों की बड़ी हेल्प करती है, एक बुजुर्ग सन उन्होंने मैनू एक दिन बिठाया, वो कहन लगे कि बेटा गल सुन, तू बहुत लोगों की मदद करना है, तो एक गल मेरी याद रखी कि लोगों की जिहड़ी मदद करना ना इंदा जिहड़ा यानी इंदा जिहड़ा रिटर्न है इंदा, ये तू ये समझना कि अल्लाह कोलों इंदा अजर मिलना, किसी
0: बेशक
1: बंदे कोलों ये नहीं कदे
0: नहीं लेना
1: सोचना, क्योंकि बंदे ते इत्थे इस तरह दे ने कि बंदे ते डिसार्ड करते ने, वो बंदे ते लोगों नू मायूस करते ने, ते हर जेड़ा काम है ना वो सिर्फ इस उम्मीद के उत्ते रखना है कि अल्लाह ताला अजर देगा, अगर ये उम्मीद रखेगा तो तेनू कदी किसी को मायूसी नहीं हुई, ये
0: सही
1: मैं उन्होंने
0: सही।
1: गल है मेरा जिंदगी जी पले रखी है अज तक अलहमदुल्ला।
0: ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यकीनन
1: जी
0: तुहाडे दिल दे विचों भी बहुत सारा, कहिंदे ना इक कैथारसिस हुंदा ते इक भार जिहा लै जांदा हुंदा है कि मैं किसे नाल अपने बचपन दीआं गल्लां शेयर करना चाहना वा कोई, क्योंकि टाइम नहीं ना, असीं की गिला करिए, बच्चां दी टाइमिंग इस तरह दी हो गई है, उहनां दीआं मसरूफियात, पहले ते नानी कोलो दादी कोलो बहि के सुणिआ जांदा सी तेरी माँ इंज करदी सी, तेरा प्यो इंज करदा सी निक्कियां हुंदिआं, ऐ इहनां दे शौक सन, आदतां सन। हुण उह टाइम भी नहीं रिहा, हुण उह मसरूफियात भी नहीं रहियां, ते साइड ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਘਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਟੀਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮੀ ਪੂਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਿਲਾਵਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮੁੰਤਜ਼ਿਮ ਜਨਾਬ ਸਾਜਿਦ ਨਸੀਰ ਸਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬਲਜਾਨੋ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਆਲਮੀ ਗੁਫਤਗੂ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਮੀਆਂ ਅਨੀਸ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਸਨ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहुजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बस सामान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मजर सामाइन, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मजर सामाइन इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मजर सामाइन सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मजर सामाइन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पर मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए, मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है, और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किया है। लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूलैंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वजीर आज़म साहब ने की, एक और ज्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वजीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। मुआज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के खिलाफ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने हॉलैंड में फिल्म बनाई थी और जिस्म पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के
3: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं।
4: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
5: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।